0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: And then we can sell to further markets as well.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और

0: स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विम्बलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: संवेद स्वरों में मातृभूमि के इसी वंदन के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यही होता है संपन्न। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने जिन कलाकारों को सुना वो थे पंडित भीमसेन जोशी, गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा और साथी, MS सुबलक्ष्मी और जगजीत सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन बिंदु के अंतर्गत आज का विचार विपत्ति और भाग्य। आलेख ललित कुमार वाजपेयी का है, वाचन कर रहे हैं राम गोपाल।
1: दिन और रात की तरह मनुष्य के जीवन में प्रिय और अप्रिय घटनाक्रम आते जाते रहते हैं। इन उभयपक्षी अनुभूतियों के कारण ही जीवन की शोभा और सार्थकता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उपलब्ध होने वाली सुविधा असुविधा का इतना महत्व नहीं जितना मानवीय सद्गुणों का। पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, संतुलन, दूरदर्शिता जैसे सद्गुणों का विकास और परीक्षण प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संभव है। यदि सदा अनुकूलता बनी रहे तो फिर ढर्रे का जीवन जीने वाले लोग गुणों की दृष्टि से पिछड़े ही पड़े रहेंगे। इस प्रकार के विकास की उन्हें आवश्यकता ही अनुभव न होगी। अनुकूल स्थिति से लाभ उठाकर हम अपने सुविधा साधनों को बढ़ाएं और प्रतिकूलता के पत्थर से घिसकर अपनी प्रतिभा पैनी करें, यह उचित है और यही उपयुक्त। कई व्यक्ति प्रतिकूल स्थिति में मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बहुत ज्यादा दुखी रहने लगते हैं। एक बार प्रयत्न करने पर कष्ट दूर नहीं हुआ या सफलता नहीं मिली तो पूर्णतः हताश हो जाते हैं। कई व्यक्ति इससे भी आगे बढ़े चढ़े होते हैं जो बैठे ठाले भविष्य में विपत्ति आने की आशंका करते रहते हैं। अपने समक्ष आ चुकी विपरीत परिस्थिति के समाधान का पुरुषार्थ या उपाय न करके वे चिंता, भय, निराशा, आशंका, उद्विग्नता जैसी उलझने खड़ी करके अपने आप को उसमें फंसा लेते हैं। छोटी मोटी आसन्न परिस्थितियों को बड़ी विपत्ति बनाकर अपने सामने खड़ी कर लेते हैं और फिर उसी में घुट घुट कर बेचैनी से जीते रहते हैं। साहसी व्यक्ति कठिनाइयों को अपने पौरुष के लिए एक चुनौती मानता है। आत्मविश्वासी अपने पुरुषार्थ के बल पर बड़ी दिखने वाली कठिनाइयों को तुच्छ सिद्ध करते हैं। कठिनाइयों से ग्रस्त व्यक्ति भी यदि धैर्य और संतुलन से काम लें तो उन्हें कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाता है। वर्तमान पर केंद्रित रहना सीख लिया जाए तो चिंता करने के लिए अवसर ही नहीं मिलेगा। जिसे बदला नहीं जा सकता उसे शांति के साथ सहन करना चाहिए। कठिनाई की घड़ी में अपेक्षाकृत अधिक साहस और अधिक पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। इन दोनों बड़े प्रभावकारी अवलंबनों को चिंता की आग में जलाकर स्वयं असहाय बन जाने में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। श्री माने इस संबंध में कहा है कि कठिनाइयां हमारे पास एकांतिक रूप से इसलिए भेजी जाती हैं ताकि उपलब्धि अधिक पूर्ण हो। हर बार जब हम किसी चीज को उपलब्ध करने की कोशिश करते हैं और हमें किसी प्रतिरोध, बाधा, यहां तक कि असफलता दिखती है उसका सामना करना पड़ता है तो हमें यह जान लेना चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह बाधा एकांतिक रूप से पूरी तरह से इसलिए है कि उपलब्धि अधिक पूर्ण हो सके। जिस प्रकार अग्नि की कसौटी में कसने के बाद सोना और अधिक निखर जाता है उसी प्रकार विपत्ति की कसौटी में कसने के बाद हर एक रुदन के साथ जुड़ा है एक गान, हर काली रात उषा

0: की लाली लाती है, ऐसी बेपत्तियां बार बार आए मुझ पर जो महाशक्त अर्जन का पाठ पढ़ाती हैं।
1: चिंतन बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज का विचार, विपत्ति और भाग्य। आलेख ललित कुमार वाजपेयी का था, वाचन कर रहे थे राम गोपाल। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्रीराम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसंग। स्वर शोभा जोशी का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 9:30 का समय होगा राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती का। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 6:50 पर होंगी खेती की बातें, विषय होगा बाजरे की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। प्रातः 7:00 आनंद लेंगे भूले बिसरे गीतों का। 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा ब्रजभाषा जल की उजारे की राह। आलेख अजय कुमार शर्मा संतोष का रहेगा, प्रस्तुति रहेगी आर के त्रिपाठी की। साथ ही लेंगे परिक्रमा के अंतर्गत ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का पाक्षिक विवरण। प्रातः 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आपसे मिलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज होगी भेंटवार्ता खड़ग सिंह छोंकर की राजेश शर्मा से। विषय होगा जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक क्यों। समय रहेगा प्रातः 9:00। प्रातः 9:30 पर होगा कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रातः 10:00 सुनिएगा विशेष रूपक जनसंख्या नियंत्रण आपदा में परिवार नियोजन। आलेख जयसिंह का रहेगा, वाचन होगा देवराज कृष्ण दीक्षित और राजेश शर्मा का, प्रस्तुति रहेगी ओपी सिंह की। प्रातः 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS होगा। दोपहर 12:00 प्रेमानंद शर्मा के गाए हुए ब्रज लोकगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 से। 1:15 का समय रहेगा बहनों के कार्यक्रम घर अंगना का। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में साफ सफाई, संग रखे स्वास्थ्य का ध्यान और विश्व जनसंख्या दिवस। साथ ही सुनेगा वार्ता बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम, वार्ताकार होंगी मोहिनी तोमर। आनंद लेंगे ब्रज लोकगीतों का, साथ ही होंगी कुछ घरेलू टिप्स। दोपहर 2:30 पर होगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। 3:00 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। संध्या 5:30 से होगा दूसरी सभा का आरंभ कार्यक्रम युववाणी के साथ। कार्यक्रम में आज की बात होगी विश्व जनसंख्या दिवस और साहित्यकार भीम साहनी की पुण्यतिथि के विषय में। साथ ही सुनेगा विशेष कार्यक्रम विश्व जनसंख्या दिवस, वाचन होगा देवराज कृष्ण दीक्षित का, प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की। संध्या 6:15 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती के लाभ और बरसात के मौसम में होने वाले कृषि कार्य। साथ ही सुनेगा वार्ता बढ़ती जनसंख्या और रोजगार सृजन हेतु खाद्य प्रशिक्षण का योगदान। जानकारी देंगे विशन सिंह, इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। बाजरे की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: भाइयों, बाजरा की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है और इसकी बुआई किसान भाइयों को जुलाई के महीने में संपन्न कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी किस्में भी हैं कि अगर आप किसी कारण से देर हो जाती है आपको बुआई करने में, तो 15 अगस्त तक इसकी बुआई आप संपन्न कर सकते हैं। बाजरा का उत्पादन विशेष रूप से किस्मों के ऊपर निर्भर करता है। संकुल और संकर किस्में इनकी हैं जिनको कि आप लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाजरा की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जहां पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती है, वहां इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाकी 2-3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को तैयार किया जाता है। बुवाई के लिए करीब 4-5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है और बीज को शोधित करके ही बोना चाहिए। जहां तक बुवाई के तरीका का सवाल है, तो हल के पीछे कूड़ों में इसकी बुवाई की जानी चाहिए और करीब 45-50 सेंटीमीटर की दूरी पर कूड़ फाड़े जाते हैं और इसमें 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को गिराया जाता है। अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी है कि खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आजकल जो संकर प्रजातियां हैं इनमें बिना उर्वरक के इस्तेमाल के अच्छे उत्पादन की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो संकर प्रजातियों के लिए करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास उसके जीवन के लिए जरूरत पड़ती है, जबकि संकुल प्रजातियों में इसकी मात्रा, खास करके नत्रजन की मात्रा 60 किलोग्राम रखते हैं और बाकी फास्फोरस और पोटास 40-40 किलोग्राम ही प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इन दोनों ही प्रजातियों की जो नत्रजन की जो मात्रा है वो आधी दी जाती है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को पूरा बुवाई के समय देते हैं। नत्रजन की जो शेष आधी मात्रा रह जाती है, बुवाई के करीब 1 महीने के बाद जब बाजरा में पर्याप्त नमी हो उस समय एक वेसल ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। वैसे तो अच्छा तरीका यह है कि आजकल जैव उर्वरकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम जैव उर्वरक के टीका लगा करके अगर इसकी बुवाई की जाती है बीजों की, खास करके इसमें एजो स्प्रिलम का टीका लगता है, तो उसका इस्तेमाल करके बुवाई की जाती है, तो नत्रजन की हम मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कम दे सकते हैं। प्रति इकाई पौधों की संख्या खेत में बरकरार रखना बहुत जरूरी है। अगर बुवाई के 15-20 दिन बाद आप जब खेत में वृद्धिकरण की क्रिया करते हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि अगर पौधों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गैप फिलिंग आपको वहां पर करनी होगी और गैप फिलिंग के लिए खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर रिमझिम बारिश हो रही है ऐसे समय में बाजरा की गैप फिलिंग की जाए तो कहने ही क्या, प्रति पौधा, यानी कहने का अर्थ यही है कि 100% पौधा के सफल होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार अगर आप बाजरा की खेती करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, सफलतापूर्वक आप उत्पादन पैदावार उनसे ले सकते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान देने की इसमें जरूरत है, खास करके पुष्पावस्था में खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर वर्षा न हो तो उस समय आप एक हल्की सिंचाई बाजरा के खेत में करेंगे तो उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। जैसा कि प्रजातियों के अनुकूल होता है कि 18 से लेकर के 20 या 22 क्विंटल तक कंपोजिट प्रजाति से और संकर प्रजाति से 20 से लेकर के 28 और 30 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है।
0: खेती की बातों के अंतर्गत अभी आप ले रहे थे जानकारी बाजरे की बुवाई में ध्यान देने योग्य बातों के विषय में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

दस्तक फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मदन मोहन को। शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हम भी इंसान हैं। स्वर हैं गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर के। शब्द रचना शैलेंद्र की है। संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

मुबारक बेगम और सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं मैं। शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के थे, संगीत दिया था खयाम ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म छबीली से। स्वर नूतन का है, शब्द रचना एस रतन की है, संगीत से सजाया है स्नेहल भाटके ने।

इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीतों का सफर यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 7:18 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
1: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भदेश्वर नाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वर नाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। टेकुआटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में फोर लेन सड़क सहित पांच सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान फोर लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47

0: पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की CBI जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयभान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है, हमारे यहाँ से HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार से तन्वीर फातिमा।
0: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1,283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी श्रोता साथिन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैया आज के कार्यक्रम को आरंभ करे हैं ब्रज भाषा झलकी उजारे की राहते। या को आलेख अजय कुमार शर्मा संतोष को है और प्रस्तुति है आर के त्रिपाठी की।
1: उजारे की राह, आइए सुने अजय कुमार शर्मा संतोष की लिखी ब्रजभाषा झलकी, प्रस्तुति आर के पोद्दार की है।

0: देख राजू, घर के काम काज में ही होशियार है वे ते काम नहीं चले। थोड़ो बहुत पढ़नो लिखनो हूँ आनो चाहिए, वरना
1: मास्टर जी वरना तो काउ दूसरे गांव में तैयार है रहे होगो। मैं तो वरनी हूँ वरनी।
0: राजू तेरो दोष नहीं, दोष तो तेरी उम्र को है, पर तू इतनो ख्याल रख तो कु आज की सीख न मानवे पे जिंदगी में एक दिन पछतानो होगो।
1: मास्टर जी चिंता मत करो, मेरे बाबू ने मेरा ब्याह कव ऑफिस के बाबू ते करवे की ठानी है। और हाँ, बाने बीए तक पढ़ाई पड़ी है, पर मास्टर जी जे बीए की पढ़ाई कितने खूबे है
0: तू गिनती जाने है?
1: हाँ हाँ 20 तक तो खूब जानो हूँ।
0: तो ये समझ ले जी पढ़ाई 14वीं कक्षा तक होवे है।
1: तो जाको मतलब जे भयो ना 10 जमा 4।
0: हाँ हाँ जी जी
1: तब तो ठीक है, 10 तक की पढ़ाई तो वो अपने पास रख लेंगे और 4 तक की पढ़ाई मैं ले लूंगी। मास्टर जी कैसी रही, बिना दिमाग खर्च किए तुम्हारे बराबर पढ़ लिख जाऊंगी। तुम तो कक्षा 4 पास हो, मुझे बाबू बता मत है।

0: मास्टर जी, बस बारात आई भी बारी है, इंतजाम तो सब ठीक ठाक है ना?
1: माधव, जन्माष्टमी की तो कहना है सकूं, पर यहां पर सब ठीक प्रकार से।
0: मास्टर जी, कल तो मेरी राजू पराई है जाएगी ना, पराई है जाएगी।
1: माधव, बेटी तो युगन युगन ते पराई होती आई है, जामे रोनो कैसो। माधव, तू दरवाजे की तैयारी करवे लग, बारात बस गांव के मोड़ पे होती वही आएवे बारी है।
0: ठीक है तो मैं चलूं?
2: अरे माधव, बारात बस आएवे बारी ही है भैया। अरे दरवाजे को सामान लाओ, और हाँ, राजो की मैया को भेजो, वासो पूजा की थारी मंगानी है।
0: अरे बसंती, भगवान कछु पंडित जी की हुई सुन ले।
3: देखो जी, बैठी तो हूँ ना, महीने ते चक्कर लगाते लगाते पाँव तो लकड़िया है गए, लकड़िया।
0: अरे अभी का चले, पतो तो तब पड़ेगो जब राजू चली जाएगी, और तो कु भैंस पोइन की सानी नहर वाले कुआ ते पानी भर के लानो पड़ेगो। सच कह रहे हूँ, मेरो तो दिल ही बैठो जा रहे है, कल तो मेरी राजू पराई है जाएगी।
3: क्यों जी, जब ना बैठो दिल, जब मुँह को ब्याह के ले आए, तब तो नेक मेरे बाबू ने भैंस देवे ते मना कहा कर दे, भट्टी में ला तो ना मारे, कुप्पा से मोहरों करके चले आए। अब पता पड़ेगा जब बेटी बारे पे कैसी विपदा बीते है।
0: बसंती, जुबान सुमारी के बात कर, ना तो
2: है। माधव, कहा कर रहे हो है? दरवाजे पे नातेदार आए रहे हैं, और तुझे अनपढ़ गंवार बसंती भाभी के मोड़े लग रहे हो है? अरे जीतो कारो अक्षर भैंस बराबर है, कहा जाने इज्जत आबरू को।
3: अरे पंडित जी, जरा जबान सुमार के बात करो, भैंस होएगी तुम्हारी घरवारी, मोते भैंस कहवे की कोई जरूरत नहीं। जे ले पूजा की थारी, और चुपचाप ब्याह के मंत्र पढ़वे लग जाओ।
2: माधव भैया, अरे मेरो तो काम तैयार है, तुम तैयारी करो।
1: पंडित जी, बारात दरवाजे आ गई है।
2: हाँ हाँ, अरे बाजन की आवाज तो आ रही है।

0: हाँ माधव भैया, वरकू चौकी पे बैठाओ और अब मस्तक पे रूरी चावल ते तिलक करो। ताम्र मूल मुख में दे दू हूं और हाँ अब वरकू अंदर लेके माल्यार्पण करवाओ। तत्पश्चात फेरान के काजे वरकू मंडप में लेकर के चलो।
1: पंडित जी जल्दी मत करो, पहले जी बताओ छोरा की गोद में रखे जी नोट हैं कितने?
0: जिजमान अवई लियो, 1, 2, 3, 10, 20, 25, 100, 2000, 5000। अरे जिजमान पक्के 5101 हैं।
1: माधव जी, जी ब्याही ना ही हो सके। एक तो अनपढ़ गंवार छोरी, बापे हूँ वायदा खिलाफी। उठ रे छोरा, गांव को चल।
2: बहरी जी, मेरी राजो को

0: गंवार कह के लज्जित मत करो। मैं वादा के मुताबिक 5,000 रुपये को बंदोबस्त कल बरात विदा है वे ते पहले कर दूंगू। अब जा वक्त मेरी इज्जत राख लियो और लालागू पेरन काजी मंडप में भेज दियो।
1: मास्टर जी मेरे ना पड़ी बेटे, मेरे सीधे साधे बाप को कितनो बेइज्जत हैनो पड़ रहे है।
2: देख बेटी राजू, तेरी नादानगी की वजह से आज तेरे बापू की पगड़ी पे ये पट्टा लगो है, पर न जाने तो को कितने दुख और सहने पड़ेंगे।
1: मास्टर जी अब मैं कहाँ कर सकूं।
2: राजू बस अब तो एक ही रास्ता नजर आवे कि ब्याता के गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ाई लिखाई कर लियो। वैसे तेने पढ़ाई लिखाई को समय अल्लड़पन में गवाए के अच्छो नहीं किया।

0: सुनाए ऐसा ना हो सके। हम तो दान दहेज में सब कुछ दे के बर्बाद है गए। वो हमारी राजू को छोड़ ना सके, ना छोड़ सके।
1: मैं क्या कहूँ मास्टर जी, मैं तो सब तनिया ते बर्बाद है गयो।
2: माधो और हाँ बसंती, ये तुम्हारी भूल का फल है। मैंने कितनी बार कही कि राजो को पढ़ाओ लिखाओ, पर तुमने एक नहीं मानी, बस अड़े रहे एक ही जिद पे कि जाको का पढ़ान। जब समाज में कोई भेदभाव नहीं, तो क्यों ना छोरी को छोरा के बराबर पढ़ाया जाए।
3: मास्टर जी, मुझसे राजो को स्कूल के बखत रोइबो ना देखो जातो।
2: अरे माधो, संतान ते हर चीज में लाड़ प्यार अच्छा हो, पर वो लाड़ कैसो जाते जीवन रोइवे की कहानी बन के रह जाए। तुम्हारी एक भूल ने जब फूल सी खिलती भई राजो के जीवन को बर्बाद कर दियो है बर्बाद।
0: मास्टर जी, मेरे बाबू ते कछु मत कर, अब जी बताओ मैं पढ़ सकूं कि ना।
2: क्यों नहीं, हर दिन सांझ को गांव में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षण में ग्राम के अनपढ़ को पढ़ाया जाए। भाई मैं तू आ जाइयो, अभी मैं चलूं।
0: बामे फीस औ लगेगी मास्टर जी।
2: प्रौढ़ शिक्षा सरकार की योजना है, जामे फीस ना लगाई जाए, मुफ्त में किताब और दी जाए।
0: अच्छा, तब तो मैं जरूर जाऊंगी।

0: राजो, आप तो पढ़ाऊ सके है और लिखाऊ सके, बाकई तू गाम बारिन के काजे एक मिसाल है। 2 महीनन में तेने पढ़ाई सीख लीनी। हाँ तो भैया, अब एक नया पाठ सुने, ध्यान से सुनो।
1: हाँ मास्टर जी, हाँ।
0: तो सुनो, हमारे देश को एक संविधान है, बाकू गरीबन के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया हो। बामे यह व्यवस्था है कि अन्याय ते लड़वे वारेन को पूरी पूरी सुरक्षा मिलेगी। ऐसी बातन की जानकारी अब तुम खुद ही पढ़ कर सको और अपने ऊपर हैवे वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सको।
2: मास्टर जी, कहाँ फायदा अब जा पढ़ाई थे, जब उम्र भर अंगूठा निशानी करत करत सेठ लोगन की बही में जिंदगी तबाह है गई।
3: रामधन, विद्या तो वो शस्त्र है जाको कोई काठी ना है। बिना शिक्षा के इंसान नेत्र विहीन ते ज्यादा कछु और ना हुए है। अच्छे बुरे को भेद बुनाई कर सके है, और तो और अत्याचार सहबे को तो वो ऐसो आदि है जाए है जैसे रोटी पानी को है जाए।
2: मास्टर जी, कुछ भी हो, मेहनत मजदूरी करके जो सेठ जी ते मिले है, बामे ही बड़ो आनंद आवे।
3: रामधन, तेरी बातन की तरिया हमारे देश के नेतान ने ऐसा सोचो हो तो गुलामी को साम्राज्य देश ते कभी नहीं मिटतो, क्योंकि कछु लोगन को गुलामी ही रास आ रही ही।
4: मास्टर जी, आज समझी हूँ प्रौढ़ शिक्षा की पढ़ाई उन तमाम जिंदगी को उजारे की राह है जिनके जीवन में अंधेरो ही अंधेरो है, जैसे मेरी जिंदगी में हो। पर मैं अपने ऊपर भय अत्याचार को नाए सहूंगी, कबू नाए सहूंगी।
0: राजो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी साधना सार्थक तो भाई।
4: मास्टर जी, एक बात बताओ, कहा मैं तुम्हारे तनिया ग्राम की अनपढ़ औरत को नाए पढ़ाए सकूं?
0: क्यों नाए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में ही नाए, कहूं भी पढ़ाए सके है।

0: और वैसे भी विद्या को दान महादान कहा जावे। मैं तो यही कहूँ, हर राष्ट्र प्रेमी नागरिक को चाहिए कि वो ईमानदारी से अपने जीवन में एक अनपढ़ को पढ़ाए के जीवन के काबिल अवश्य बनावे।
1: मास्टर जी, आज से मैं अपनी मुश्किलें ने भुलाई के जब गांव की अनपढ़ ने अवश्य पढ़ाए लिखाए के जीवन जीवे के काबिल बनाऊंगी।
0: राजो।
1: हाँ मास्टर जी, हाँ साची कह रही हूँ। जाते फिर काऊ और माधो की पगड़ी में बेइज्जती को बट्टो तो ना लग सकेगा।
2: अभी तक आप सुन रहे थे अजय कुमार शर्मा संतोष की लिखी ब्रजभाषा झलकी उजारे की राह। इस झलकी में भाग ले रहे थे अंजू सूद, कुसुम कुलश्रेष्ठ, विनीत कुमार, अंजू कुलश्रेष्ठ, हेमेंद्र दीक्षित, किशन स्वरूप पचौरी और यतीन्द्र पचौरी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे आर के पोद्दार।
3: तो भैया, अभी आपने सुनी ये ब्रजभाषा झलकी और यहाँ के पश्चात आओ भैया अब सुने ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण परकम्मा के अंतर्गत। वाचन कर रहे हैं याको ब्रजभान गोस्वामी।
4: ब्रज परिक्रमा सुनने वाले सभी भैयन को राधे राधे। भैया कहो जावे तीन लोग ते मथुरा न्यारी या मथुरा नगरी में अलग ही न्यारोपन देखबे को मिले है। यहाँ पे ठाकुर जी के नित्य नए उत्सव पर्व मनाए जावे। अलग अलग संस्थान द्वारा विविध प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराए जावे। जाते जे मथुरा नगरी सदैव जीवंत नित्य नूतन प्रतीत होए है। जा पखवाड़े में वृंदावन के भगवान जगन्नाथ मंदिर में 108 कलश ते भगवान जगन्नाथ जी के अग्रज बलभद्र एवं उनकी बहन सुभद्रा जी को अभिषेक कियो गयो। जाके बाद भगवान के बीमार हैजाबे पे 16 दिन को भगवान के पट बंद भए। मानता है कि भगवान इन दिन में बीमार हैजामे और 16 दिन तक उनकी विविध प्रकार से सेवा होए है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ को वैदिक मंत्रण शंख घंटा झांझ मजीरा और मंगल ध्वनि के बीच पंचामृत अभिषेक कियो गयो। अभिषेक उपरांत ठाकुर जी के पट बद्ध किए गए। ठाकुर जी के अस्वस्थ है जावे पे 15 दिन के ताई उनकी एकांत सेवा हुए है। यही प्रकार छाता में हनुमान बगीची में श्रीमद् भागवत को आयोजन कियो गयो। विगत 14 वर्षों से जे भागवत कथा यहाँ संपन्न है रही है। जा कथा के विषय में प्रतिनिधि ठाकुर फाल्गुन ने कहो कि ऐसे धार्मिक आयोजन ते आध्यात्मिक ऊर्जा को संचार तो होवे ही है। समाज में भाईचारों और सौहार्द भी बढ़े है। वृंदावन में गोपीनाथ बाजार स्थित प्राचीन ठाकुर श्री अग्रबिहारी महाराज मंदिर में ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करवे को जलधारा महोत्सव को श्रद्धा भक्ति एवं उल्लास के संग आयोजन कियो गयो। यह अवसर पे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे पुष्पंते और विद्युत सज्जा से सजायो गयो। ठाकुर जी के दर्शन के संग ही मंदिर की शोभा हु देखते ही बन रही। मंदिर के सेवायत दाऊदयाल शर्मा जी ने बतायो कि जे मंदिर ऐतिहासिक एवं प्राचीन महत्व को केंद्र है, जहाँ पे सदियों ते चली आए रही परंपरा को विधिवत पूर्ण निर्वहन हुए है। राधा दामोदर मंदिर में हूँ ठाकुर जी को जलाभिषेक कियो गयो। यही प्रकार वृंदावन में टेढ़े खम्बे के नाम से प्रसिद्ध शाहजी मंदिर में विराजमान ठाकुर राधामण लाल जी को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पे मंदिर परिसर में स्थित दिव्य बगीचे में विराजित कियो गयो, जहाँ भक्तन के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किए। याही पखवाड़े में कुशी कला में सराफा बाजार में गुरु माँ गणनी अर्थ का श्री 105 आर्समती माता के नगर आगमन पे 25 कलशन ते पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लियो गयो। तत्पश्चात जैन संप्रदाय के लोग ने उनके मुख से प्रवचन सुने। छठीकरा राधा कुंड स्थित प्राचीन महेरा हनुमान मंदिर में मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास के संग सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को पाठ कियो गयो, जहाँ में श्रद्धालु ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लियो। जा पखवाड़े सांसद हेमा मालिनी ने रोलर स्केटिंग खिलाड़ी

राखी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित कियो। सांसद ने पाखी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर जिनके उज्जवल भविष्य की कामना करी। गांव सुखारी में ही श्री हरिदास शीतल छाया ट्रस्ट वृद्धाश्रम के प्रथम तल को लोकार्पण संत पंडित बाबा शिव हरिदास हेलीकॉप्टर बाबा ने कियो। कोकिलावन के सन्निधाम के महंत प्रेमदास महाराज ने मंत्रोच्चार कर कियो। नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में एक गोष्ठी को आयोजन कियो गयो। कार्यक्रम जिलाधिकारी जनप्रतिनिधि एवं व्यापारी ने ब्रिज को स्वच्छ सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनावे को सामूहिक भागीदारी को संकल्प लियो। सामाजिक संस्था प्रयास के संग मिलके अलीगढ़ की संस्था लायंस क्लब ने नगर को सामाजिक और धार्मिक भ्रमण कियो और आवश्यकता बार स्थानन को सहयोग करने को प्रण लियो। जाही पखवाड़े जगह जगह डॉक्टर्स दिवस मनाया गयो। केडी विश्वविद्यालय केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में यह दिवस मनाया गयो। यह अवसर पर जन स्वास्थ्य रक्षा में समर्पित पीजी छात्र छात्रन को सम्मानित कियो गयो। हेल्थ केयर पे डॉक्टर विनीता गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन कुमार, डॉक्टर अंजू भारती द्वारा लिखित पुस्तक हेल्थ कम्युनिकेशन को विमोचन भी कियो गयो। यही पखवाड़े आगर मंडल की तैराकी टीम के चयन ट्रायल में मथुरा के 7 खिलाड़ियों को चयन कियो गयो। गोरखपुर में 10 से 13 जुलाई तक हैवेवारी प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए मोहन पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम में ट्रायल भयो, जहां में 28 बालकन में थे 9 बालकन को चयन कियो गयो। यही क्रम में नौजील के बाजना के प्रधान दुर्गेश ने दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र को नाम रोशन कियो। जहाँ प्रतिष्ठित प्रतियोगिता को आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा संचालित देश की विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज नई दिल्ली में कियो गयो। गोवर्धन में गोवर्धन थाने के परिसर में सौदर्यकरण को कार्य पूरा भयो। जाके प्रवेश द्वार को और नवनिर्मित परिसर को लोकार्पण DIG शैलेश पांडे और SSP श्लोक कुमार द्वारा कियो गयो। या क्रम में ही वृंदावन के अन्नपूर्णा मंदिर में भागवत गीता का चिंतन विषयक कार्यक्रम आयोजित कियो गयो, जहां में भागवत भक्त संदीप कुमार सुंडा ने बतायो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज गीता ज्ञान परम आवश्यक है। जाके संग मंदिर सेवायत भाईलाल बशीर नेहू अपने विचार व्यक्त करे। चौमा में गोपाल जी मंदिर में भजन संध्या को आयोजन कियो गयो, जाके उद्देश्य को रखते भए मंदिर के सेवायत मदन मोहन दास ने बतायो कि ये भजन संध्या धार्मिक आस्था मजबूत करवे और नई पीढ़ी को अध्यात्म ते जोड़वे के उद्देश्य से आयोजित करी गई। वृंदावन के सिंहपौर हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ को भव्य आयोजन कियो गयो। महंत सुंदरदास महाराज ने बतायो कि लोक कल्याण और विश्व शांति की कामना ते जे भक्ति में कार्यक्रम रखो गयो है, जाते भक्तगण सहजी अध्यात्म ते जुड़ जामे। याही पखवाड़े गोवर्धन में हम सबने यह ठाना है ब्रज को स्वच्छ बनाना है महाअभियान आयोजित कियो गयो, जहाँ में आगरा मंडल के मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता को संदेश दियो। जा कार्यक्रम में GLA के कुलाधिपति नारायणदास अग्रवाल, KD यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने इस अभियान की फॉलो अप कार्यशाला भी आयोजित करी गई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर में स्कूल चलो अभियान फेज 2 का शुभारंभ कियो गयो। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलदेव विधायक पूरन प्रकाश व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह उपस्थित रहे। वृंदावन में छठीग्राम मार्ग स्थित प्रसिद्ध हनुमान टेकरी आश्रम में ठाकुर जानकी वल्लभ लाल महाराज को भव्य फूल बंगला सजाया गया, जहाँ में देशी विदेशी फूलन की सुंदरता देखते ही बन रही। जहाँ अवसर पर ब्रज के अनेक संत महंत दर्शन करवे पहुँचे।
गौरी गोपाल आश्रम में साधु सेवा एवं भंडारे

0: को आयोजन भी कियो गयो। जाके संग ही भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण को आयोजन हूँ करो गयो। ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ की ओर से अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। रिफाइनरी टाउनशिप स्थित कर्मचारी क्लब में मेधावी छात्र छात्रन को या अवसर पे सम्मान करो गयो। कार्यक्रम में 105 मेधावी छात्र छात्रा सम्मानित करे गए, जिनको प्रशंसी पद मेडल और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भेंट करी गई। राधाकुंड कुसुम सरोवर स्थित गिरिराज संत सेवा आश्रम पे साधु संत ब्राह्मणों द्वारा वैदिक धर्म के ऊपर एक गोष्ठी आयोजित करी गई, जामे यज्ञ वैदिक धर्म परंपरा आदि पे विचार मंथन करो गयो। आए अतिथि संतों ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करे। जाही क्रम में संस्कृति विभाग और वृंदावन शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में चरकुला लोक नृत्य कार्यशाला को समापन कार्यक्रम संपन्न भयो। समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री मोहनस्वरूप भाटिया जी ने कहो कि चरकुला लोक नृत्य ब्रज की सांस्कृतिक पहचान और आस्था को प्रतीक है। निदेशक राजीव द्विवेदी ने बतायो कि जे संस्थान लोक कला साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण को कटिबद्ध है। ग्रीष्म काल में बांके बिहारी जी के नित्य नए फूल बंगला सज रहे हैं। बिहारी जी मंदिर में सेवक भक्तन द्वारा सेवा देते भए नित्य प्रति फूल बंगलाओं को आयोजन है रहे हो है, जहाँ में विराजित ठाकुर जी भक्तन को रिझाए रहे हैं। इन फूल बंगलान को स्वरूप देखते ही बने है, चौकी देश विदेशन के अनेक प्रकार के फूलन को प्रयोग या फूल बंगला में कियो गयो हो। या प्रकार बीते पखवाड़े में ब्रज क्षेत्र में अनेक सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम को आयोजन भयो।
1: तो भैया अभी आपने परिक्रमा के अंतर्गत सुने हो ब्रज की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पाक्षिक विवरण ब्रजभान गोस्वामी पैती। भैया या समय बरसात को मौसम आयु वारो है और बारिश आरंभ है चुकी है। ऐसे समय में घर से बाहर निकलते समय आप विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कारण यह है कि बहुत सारे स्थानन पे हमें पता नहीं चले लेकिन सड़क में गड्ढे है रहे हैं और क्यों स्थान ऐसे हैं जहां हम ध्यान ना दे पावे लेकिन करंट को डर बनो रहे। तो भैया कोशिश यह करो कि यदि बरसात है रही है तो आप घर से बाहर मत निकलो। अगर बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु आप जानो ही पड़ रहे हो तो बहुत ध्यान रख के आप आगे बढ़नो है। और हम सब जाने हैं कि यह मथुरा नगरिया में जो पुराने बाजार वालों स्थान है, जो मंदिरन के आसपास को स्थान है, विन स्थानन पे जल भराव बहुत अधिक हुई है। तो अगर बहुत तेज बरसात है तो आप बरसात में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ो। आप एक स्थान पर रुक जाओ और पानी निकसवे को इंतजार करो और अपनी जान की सुरक्षा अवश्य करो। आप विशेष रूप से बरसात के समय पे ये ध्यान रखना है कि यदि आप छतरी को प्रयोग कर रहे हो तो छतरी वो वारी आप नहीं लेनी जाके ऊपर लोहे की एक डंडी निकली रहे, या तो आप करंट वगैरह लगवे को बहुत ज्यादा खतरा रहे। तो भैया अपने आप सुरक्षित रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इन्हीं शब्दन के संग अब घड़ी हमें कर रही है संकेत के समय है चलो है आप ते अनुमति लेवी को। तो स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज होगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
5: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship.

0: Directors last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होगा। हमारे विशाल व्यापारिक जोन है, हमारी आईलैंड टेरिटरी है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। इस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली

0: अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दे, यादों से ऊर्जा ले भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्थल फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनपढ़ में। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की थी, संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है अनोखी अदा। स्वर किशोर कुमार का है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

महेंद्र कपूर के सुर में अभी सुना आपने ये गीत। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी। शब्द रचना SH बिहारी की थी, संगीत दिया था OP नैयर ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है फांसी के बाद। स्वर लता मंगेशकर का है, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

मुकेश और कंचन के युगल स्वरों में अभी सुना धर्मात्मा फिल्म से आपने ये गीत। शब्द रचना इंदीवर की थी, संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने।

0: लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म भरोसा में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी, संगीत दिया था रवि ने। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं होता है संपन्न। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आपसे मिलिए क्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक क्यों। खड़ग सिंह छोंकर से भेंट कर रहे हैं राजेश शर्मा। प्रस्तुति ओपी सिंह की है।
1: हमारा भारतवर्ष प्रगतिशील विकासशील देशों की दौड़ में बहुत आगे है। किसी भी देश के विकास की गति क्या है, इसका आंकलन करने के लिए देखना होता है कि वहां की जनता को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, उनका रहन सहन का स्तर क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, चिकित्सा की सुविधा क्या है, वहां का वातावरण क्या है। ऐसे बहुत से बिंदु हो सकते हैं। इन बिंदुओं पर दृष्टिपात करें तो हमें लगता है कि अभी हमारा देश इसमें बहुत कुछ पीछे है। हमें ये बहुत ही गहराई से देखना है कि हमारे देश के पीछे रहने का वास्तविक कारण क्या है। 7 दशकों में भी हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां तक कि हमें पहुंच जाना चाहिए था। गरीबी का बना रहना, भुखमरी की स्थिति बनना, बेरोजगारी का दूर ना होना, शिक्षा में समुचित सुधार न होना, स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी रहना, बिजली पानी सड़क जैसी सुविधाओं का अभाव बना रहना, और देखें तो ध्यान में आता है कि तमाम तरह से प्रदूषण का बढ़ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और यातायात के साधनों का अभाव बने रहना, ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिनकी तह में जाकर कारण ढूंढने का अध्ययन करें तो समझ में आता है कि इन सब का कारण अधिकांश रूप में एक ही दिशा में जाता है, वो है जनसंख्या वृद्धि। अब देखना होगा कि कई दशकों से इस समस्या के निदान के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम सफलता की रेखा से बहुत ही पीछे नजर आता है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले से अपने भाषण में जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त करना ये विश्वास पैदा करता है कि इस समस्या के निदान के लिए सरकार अत्यधिक गंभीर है। एक बहुत बड़ी आबादी सामान्य स्तर से बहुत नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन है तो दूसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। विश्व की कुल आबादी का 18% हिस्सा भारत का है, जबकि पीने का पानी मात्र 4% ही पीने योग्य है। बेरोजगारी 9% के लगभग बताई गई है। अन्य जीवन उपयोगी आवश्यकताओं में भी हम बहुत पीछे हैं। इस सब पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि का होना ही पाया जाता है। किसी भी देश के लिए जनसंख्या का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उस आबादी के लिए मूलभूत आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हैं या नहीं। यदि प्राप्त हैं तो हम विकसित होने की बात कर सकते हैं। यदि ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं तो उसके लिए ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना ही होगा। 7 दशकों के बाद भी हम आवश्यक जीवन उपयोगी सुविधाओं का अभाव पा रहे हैं, फिर भी जनता द्वारा कभी भी इस बिंदु को अपने स्तर से प्रमुखता से नहीं उठाया गया। जनसंख्या को नियंत्रित करने की मांग जनता की ओर से मुखरित न हो सकी। आंकड़ों पर ध्यान दें तो यही पाया जाता है कि इस समय की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या 8 अरब को छूने वाली है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या 1,44,42,00,000 से ऊपर है। इसके बाद भारत का नंबर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,39,19,00,000 से अधिक हो चुकी है, जो कि चीन से थोड़े ही कम है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सन 2030 तक भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाने की संभावना है, जबकि चीन का क्षेत्रफल भारत से

तीन गुना अधिक है और जनसंख्या में भारत आगे निकलने जा रहा है। ये एक विचारणीय और चिंतनीय बिंदु है, गंभीर विषय है। चीन ने आबादी संतुलन के लिए कठोर कदम उठाए हैं, उसने प्रभावशाली नीति बनाई है। इसमें जनसंख्या को नियंत्रित करने में चीन सफल भी हो रहा है। यदि विश्व के देशों में अलग अलग दृष्टिपात करें तो निष्कर्ष में पाते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, दूसरे वो देश हैं जहां जनसंख्या संतुलित है, स्थिर है, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या दर कम हो रही है। तेजी से जनसंख्या बढ़ाने वाले देशों में ओमान, बहरीन, नारू, नाइजर, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, कुवैत, लेबनान, जॉर्डन, फलस्तीन जैसे देशों के नाम आते हैं। स्थिर जनसंख्या की बात करें तो श्रीलंका, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, आयरलैंड और क्यूबा जैसे देश आते हैं। इसी तरह यदि घटती जनसंख्या दर की बात करें तो रिको, लिथुवानिया, लातविया, बुल्गारिया, यूनान, पोलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जापान आदि देश हैं। आधारभूत समस्याओं का बोझ ढोने वाले देश वो ही हैं जहां जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। वो समस्या चाहे गरीबी की हो, भुखमरी की हो, बेरोजगारी की हो या अन्य तमाम तरह की समस्याएं हों, विकास, प्रगति, खुशहाली उन्हीं देशों में है जहां जनसंख्या स्थिर है या कम हो रही है। देश का, देशवासियों का, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारना है तो जनसंख्या वृद्धि को रोकना ही होगा। जनसंख्या कम होना शुरू होगा तो निश्चित ही आवास की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही जनसंख्या वृद्धि पर जो चिंता व्यक्त की तो बुद्धिजीवी और जागरूक वर्ग को ऐसी अपेक्षा थी कि इसके लिए आमजन भी आवाज उठाए तो सरकार को बिल लाने में आसानी होगी। साथ ही राज्य सरकारें भी वोट की राजनीति को त्याग कर जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने में सहयोग करेंगी। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी अभी 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है, जिसमें यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार है। इसमें बताया गया है कि जो लोग नौकरी में हैं और स्वैच्छिक नसबंदी कराते हैं तो उनको अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवास योजना में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जैसी बहुत सी सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी 23 करोड़ से अधिक है, जिसकी रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में बहुत ही कारगर कदम उठा रही है। नई जनसंख्या नीति का पालन करके सरकार का साथ देना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश और हमारा देश प्रगति की राह में अग्रसर हो सके। सरकार इसमें आम जन की राय जानना चाहती है, जो सुझाव हों वो दे सकते हैं। जिन परिवारों में दो बच्चे या उससे कम हैं, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कमी की जाएगी। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में ये एक सराहनीय, प्रशंसनीय पहल है। बढ़ती जनसंख्या बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें कानून की सहायता से जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक किया जाएगा। हर परिवार में बच्चों के जन्म के बीच में समुचित अंतराल होना चाहिए। इस नीति के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान लाया जाएगा। प्रदेश सरकार चाहती है कि कानून की सहायता से जनसंख्या वृद्धि रोकने का काम किया जाए। राज्य विधि आयोग ने इस दिशा में एक ड्राफ्ट बनाया है ताकि सरकार को कानून बनाने में आसानी हो सके। इस नीति के अनुसार जिनकी एक ही संतान है उन्हें मुफ्त इलाज, बीमा,
शिक्षा

0: और सरकारी रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस नीति में ये बताया गया है कि बढ़ती आबादी विकास की राह में किस प्रकार से बाधा बन चुकी है। इस नीति का उद्देश्य जनसंख्या स्थिर करने की ओर है तथा वृद्धि दर रोकने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सरकार परिवार नियोजन से जुड़े बहुत से कार्यक्रम भी शुरू करेगी। इसलिए आम जन का दायित्व है कि सरकार की भावना को समझें और सरकार का सहयोग करें, साथ ही सरकार का साथ दें। इसमें प्रदेश का, देश का, जनता का और भावी पीढ़ी का हित निहित है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक क्यों? आलेख खड़क सिंह छोंकर का था, वाचन कर रहे थे राजेश शर्मा, प्रस्तुति रही ओपी सिंह की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: तनु केंद्र है जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
2: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69

85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला

0: अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि भेजी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
1: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
0: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। NOC जब भी इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है, हमारा निर्धारित मानक, वो पूरा करते हैं जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
3: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
4: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि

0: भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
1: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है, बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन, ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयरापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री विजय सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है नदी नालों की सफाई। वाचन कर रहे हैं विष्णु प्रकाश शर्मा।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मथुरा रिफाइनरी मथुरा। मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी, पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार और समर्पित प्रतिष्ठान, विकास का आधुनिक मंदिर, पर्यावरण प्रबंधन के लिए एशिया की पहली ISO 14001 रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी, विशाल इकोलॉजिकल पार्क को सहेजे, ब्रज के फ्लोरा एवं फोना का जीता जागता नमूना, ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण को सदैव समर्पित मथुरा रिफाइनरी स्वच्छ एवं हरित रिफाइनरी।
1: हम हर रोज हिमालय से बर्फ पिघलाकर तो पानी ला नहीं सकते। दूषित पेयजल पीने या भोजन बनाने के काम में लेने से मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इससे हैजा, उल्टी, क्षय, टाइफाइड, पीलिया और पोलियो जैसे विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। यहां तक कि नहाने धोने के लिए भी प्रदूषित पानी का उपयोग करने पर चर्म रोग हो सकता है और अन्य प्रकार से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। नदियों का जल

0: स्वच्छ प्रवाहित होता रहे तो इससे पर्यावरण तो साफ सुथरा एवं ताजगी भरा रहता ही है तथा देखने में दृश्य भी मनोरम लगता है, जिससे एक अलग ही आत्मिक शांति सी अनुभूति होती है। नदियों की स्वच्छता का अपना ही महत्व है। गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाकर इसकी पूजा को आज भी उतने ही प्रासंगिकता से देखा जाता है। गंगा ही नहीं, प्रदेश की हर नदी को हमें स्वच्छ रखने की महती आवश्यकता है, इसलिए इनकी सफाई की अलग से व्यवस्था करना नितांत आवश्यक हो गया है तथा भारत सरकार द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में गंगा जल आयोग का गठन भी कर दिया गया है। इसी प्रकार नालों की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाली सड़क के दोनों किनारों या एक किनारों की तरफ प्राय देखी जाती है। नालियां की स्वच्छता के लिए जरूरी है कि हम पॉलीथीन का कचरा तथा अन्य जमा होने वाला कचरा उसमें नहीं डालें एवं नालियों का ढकान करवाना भी अत्यंत आवश्यक है। दूर दराज के गांवों में आज भी पेयजल व्यवस्था हैंडपंप एवं तालाबों पर निर्भर है। हैंडपंप तो ढका हुआ रहता ही है, परंतु तालाबों के खुले होने के कारण उनमें भी अशुद्धियां प्रवाहित करने की गलत परंपरा को रोकना अत्यावश्यक हो गया है। अतः इनकी स्वच्छता भी अति महत्वपूर्ण है। इनकी सफाई से ही पर्यावरण स्वच्छ रहता है एवं आबोहवा भी ऑक्सीजन युक्त एवं ठंडी होती है। यदि नदी नालों और तालाबों में गंदगी रहेगी तो वहां हवा भी दूषित हो जाएगी और पानी भी पीने लायक नहीं रहता। नालियों का सही प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए और उनका ढकान होना चाहिए। हालांकि स्थान स्थान पर सुविधा अनुसार मैन होल छोड़ देने चाहिए ताकि सफाई आसानी से की जा सके। नदियों एवं तालाबों में आजकल जो मूर्तियां विसर्जित करने की अंधभक्ति चली आ रही है उसको भी रोकने की आवश्यकता है। अजले शवों को नदियों एवं नहरों में बहाने से रोगी शव के कीटाणु जल में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि इससे नदियों का पानी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए इस दिशा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने, विचारने और अमल करने का समय आ गया है, अन्यथा हमें प्रदूषित जल के प्रयोग पर विवश होना पड़ेगा, जिसका विपरीत असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जो बिल्कुल उचित नहीं है। अस्थि विसर्जन को प्रतीकात्मक बनाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि गंदगी कम से कम प्रवाहित की जाए। नदी एवं अन्य जल स्रोतों में अपशिष्ट पदार्थ बहाना और डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कदम उठाना वांछनीय हो गया है। संसद द्वारा पारित जल प्रदूषण निवारण कानून का कड़ाई से पालन करवाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मथुरा रिफाइनरी मथुरा।
2: आबोहवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता नदी नालों की सफाई। वाचन कर रहे थे विष्णु प्रकाश शर्मा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति दे रही हैं सुरभि शर्मा। संयोजन ओपी सिंह का है।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उत्साह के साथ। हर दिन अपने आप में एक नई ऊर्जा लेकर हमारे सामने आता है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो उसको किस दृष्टि से देखता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बीते हुए कल में अपना पूरा समय निकाल देते हैं। कहा भी गया है, जो कुछ है आपका वर्तमान है, आपका भविष्य है। अपने वर्तमान पे कार्य कीजिए तो आपका भविष्य भी संवर जाएगा, सज जाएगा। जो कुछ हम पीछे गलतियां कर चुके हैं उनको भूल जाइए, उनसे सबक लीजिए, एक नई शुरुआत करें नए उमंग और नए उत्साह के साथ। कोशिश कीजिए आपका आने वाला कल अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि आप उसके लिए आज प्रयास कीजिए। हमारे पास जितनी भी खुशियां हैं वो हमारे आसपास बिखरी होती है, लेकिन मानव का स्वभाव होता है कि छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने के बजाय बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करता है, बड़ी बड़ी मंजिलें तय करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि एक बार में छलांग लगा के अपनी मंजिल पहुंच जाए। जबकि आप हर दिन एक एक कदम चलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, सच्ची आराधना का कोई

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
2: आराम से मैडम.
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

0: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: श्रोताओं, आज है 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या यानी के किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इतिहास है, इन्हीं सारे विषयों को लेकर हमने जानकारी हासिल करी। हमारे साथ हैं
2: प्रोफेसर पल्लवी सिंह, KR गर्ल्स PG कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ मैं। और जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो 11 जुलाई 1989 को स्थापित हुई थी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए या इसके नियोजन को ध्यान में रखते हुए इस दिवस की स्थापना की गई।
3: जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है?
2: मुख्य रूप से अगर हम ध्यान दें कि किसी भी राष्ट्र के लिए जन शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है और यही जन शक्ति है जनसंख्या से ही उत्पन्न होती है। और एक तरह से हम ध्यान दें तो परिवार का नियोजन कैसा हो, लिंग की समानता बनी रहे, गरीबी यानी हमारे जो इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी हो, इसको ध्यान में रखते हुए साथ ही मातृ स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखें, क्योंकि महिलाओं अगर बहुत सारे बच्चे एक व्यक्ति विशेष की सही पोषण तत्व आदि ना मिले और उसके बार बार बच्चे हो रहे हैं, 10-15 बच्चे हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वो स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। तो मातृ स्वास्थ्य तथा मानव अधिकार, ये इसके एक दोनों ही एक दूसरे के पहलू हैं एक दूसरे के। तो मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु भी जनसंख्या का नियंत्रित होना, स्वस्थ होना और जनसंख्या किस तरह की हो इस पर विचार करने के लिए ही राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जुलाई 1989 को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया।
3: आपने शब्द का जिक्र किया जनशक्ति। जनशक्ति और जनसंख्या का बढ़ना दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जनशक्ति कहीं ना कहीं शक्ति ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत पावर आ गई है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। वही जनसंख्या का बढ़ना कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी, परेशानी, कई सारी बीमारी को नौता, कई सारी समस्याओं को नौता दिया जाता है। इन दो शब्दों का क्या अभिप्राय है?
2: देखिए, जनशक्ति का मतलब है ऐसी जनसंख्या जो पढ़ी लिखी हो, पात्रता लिए हुए यानी योग्य जनसंख्या हो, ऐसे टेक्नोलॉजिकली साउंड हो, ऐसी अगर जनसंख्या होती है तो राष्ट्र का विकास सुनिश्चित है। तो ऐसी जनसंख्या को हम जनशक्ति कह सकते हैं जो राष्ट्र के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। दूसरी तरफ केवल जनसंख्या शब्द का मतलब है कि संख्या में तो वृद्धि हो रही है लेकिन वो जनसंख्या जो है ना तो पात्र है, ना ही नियोजित है, ना योग्य है कि राष्ट्र का विकास कर सके। तो ध्यान से अगर देखें कि अगर हमारे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो पढ़ी लिखी नहीं होती है तो देश के आर्थिक विकास में वो सहयोग नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं देश की जो आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो लचर हो जाती है और स्वाभाविक रूप से जो हमारी गरीबी जो होती है वो बढ़ने शुरू हो जाती है। यानी एक व्यक्ति जो एक औसतन जीवन व्यतीत करता है उसकी आय क्या होनी चाहिए, उससे अगर नीचे होती है तो बिलो पॉवर्टी लाइन भी होता है। और ज़्यादातर हमने अपने देश में देखा है कि जिस, क्योंकि आज हम अगर जनसंख्या को ध्यान में रखें तो हम चीन से भी आगे बढ़ चुके हैं। आज विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश भारत तो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा राष्ट्र है हमारा देश। और अगर हम ये ध्यान दें तो हमारे यहाँ की जनसंख्या जो है अगर एजुकेटेड भी देखें तो 60% लोग एजुकेटेड है, 40 आज भी अनएजुकेटेड है। उसके अलावा अगर साक्षरता केवल लिखित रूप से देखी जाए कि केवल नाम लिखना साक्षरता के तहत है तो वो भी अगर हम ध्यान में अगर रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जनसंख्या केवल साक्षर है। और हमारी अगर जनसंख्या पढ़ी लिखी हो और हम इसे विविध कार्य में, क्योंकि अगर हम एक तरह से ध्यान दें कि भारत एक ऐसा देश नहीं है जिसमें संसाधनों की कमी हो, कहीं ना कहीं हम प्रभुत्व ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ हर तरह का मौसम भी है, हर तरह की चीज़ें हैं, संसाधन संपूर्ण राष्ट्र है, लेकिन क्या इस संसाधन को सदुपयोग करने वाली जनसंख्या है? तो अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो आज भी हमारे यहाँ टेक्निकली साउंड जनसंख्या नहीं है, इसीलिए मैंने जनशक्ति का प्रयोग किया है। अगर हमारी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, साक्षर है, सही क्षेत्र में बढ़ रही है, हम अपने प्राचीन परंपराओं को जानते हुए आधुनिक

0: तकनीक को भी अपने साथ लेकर के बढ़ रहे हैं और हमारी पूरी तरह से साक्षर समाज को उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो जनसंख्या हमारी शक्ति के रूप में उत्पन्न होगी और देश के हित में काम आएगी।
1: अगर कहा जाए कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के विकास को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी रूप में हो, दीमक की तरह खत्म कर देती है, क्या ये सही है?
0: जी, कहीं ना कहीं तो हम अपने देश के साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि परिवार नियोजन कुछ देश के आज़ादी तक तो किसमें अचानक फेमीन वगैरह आ गई थी, बाढ़ वगैरह आ गया था और एक तरह से जनसंख्या पूरी तरह से आधी हो गई थी। उस समय फिर एक विचार आया कि भाई जनसंख्या को बढ़ाई जाए और जनसंख्या अनियंत्रित सी हुई पुनः 1990 के पश्चात। उसके पहले ही आप ध्यान से देखिए तो 1980 से परिवार नियोजन कार्यक्रम है, हम दो हमारे दो ऐसे स्लोगन आए थे। तो ये दो कहने का मतलब भी है कि हम ऐसे जिसकी परवरिश, हम बच्चों की भी परवरिश ताकि उनको पूरा पोषण मिले, उनको पढ़ने के क्षेत्र में कहीं रुकावट ना आए, हर तरह की सुविधा जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको प्राप्त हो, वो तभी हो सकती है जब परिवार सीमित होता है। और अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला हो, 20 व्यक्ति खाने वाला हो और वहीं एक परिवार में एक व्यक्ति कमाना और दो खाने वाला, तो आप सहजता समझ सकती हैं कि अगर 10,000 की आय है तो किस में कैसे विभाजित होगी। तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या तभी सुंदर लगती है जब वहाँ पर संसाधन भी पूरे हों, और इसलिए नियंत्रित परिवार नियोजन का उद्देश्य भी यही है कि हम नियोजित परिवार के साथ चले, एक प्लान्ड फैमिली हो, प्लान्ड फैमिली के तहत बहुत ज़्यादा बच्चे ना हो, दो बच्चे हों, ताकि उनकी हम पूरी तरह से उनके जीवन में जो भी पढ़ाई लिखाई, खाद्य सामग्री वगैरह जो भी उनकी पूर्ति करनी होती है, जो भी इच्छाएँ हैं वो अपनी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो एक जनसंख्या का नियंत्रित होना बहुत ज़रूरी है। आप उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोगों को बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए आइए, यहाँ पर आप लोग आइए, आपको रहने की सुविधा दी जा रही है। बहुत सारे ठंडे इलाके हैं जहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ सरकार आमंत्रित कर रही है, लेकिन कुछ जगह पर हम जैसे देशों में जहाँ पर है तो वहाँ पर नियोजित होना बहुत ज़रूरी है। जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से अगर हम प्रगति का आकलन करें, प्रगति में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जनसंख्या हमेशा प्रगति पे हावी हो जा रही है, इसलिए हम अपने विकास की जो सीमा हमने तय कर रखी है या प्रधानमंत्री की योजना 2047 में वो चाह रहे हैं कि देश एक अग्रगण्य राष्ट्र के रूप में सामने आए, विकसित देश के रूप में, और ये परिकल्पना उनकी साकार तभी हो सकती है जब ये जनसंख्या नियंत्रित रहे, विकसित रहे, शैक्षिक रूप से संपन्न रहे और तब जाके, और साथ ही साथ तकनीकीय रूप से भी साउंड रहे, तभी जाके हम सही राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं।
1: कुछ लोगों को ऐसा मानना होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना काम होगा, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, उनका जीवन स्तर, उनका रहन सहन, उनका शिक्षा का स्तर अच्छा हो या बुरा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितने बच्चे होंगे उतना काम होगा, उतने पैसे आएंगे, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहिए?
0: देखिए, संख्या दो, एक मुंह के साथ दो हाथ आ रहे हैं, ऐसा विचार आपका है, लेकिन मुंह भी तो आ रहा है, दो हाथ तो हैं। अब ये कहना कि मेरे पास 10 बच्चे हो जाएं, किसी एक परिवार में 10 बच्चे और हमने उसको पढ़ाया नहीं, पढ़ाने के अलावा फिर ऐसे बच्चे में हाथ आने से भी क्या फ़ायदा, बच्चों के होने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बच्चे कहीं किसी कौशलपूर्ण जितने भी काम हैं जिसमें कुशलता की आवश्यकता है, ये तकनीकीय मतलब तकनीकी रूप से साउंड होने की आवश्यकता है, ऐसे कार्य तो करने ही पड़ेंगे। केवल मतलब संख्या की अभिवृद्धि से ये ज़रूरी नहीं कि हम बच्चों की ज़्यादा संख्या से हम एक राष्ट्र या एक अच्छे परिवार को बना रहे हैं।
1: हाँ,
0: आपका स्वाभाविक है, आपके पास 10 बच्चे हैं, सभी के साथ सामान्य व्यवहार अगर नहीं हुआ, उनमें से आप सब पे बराबर दृष्टि भी नहीं रख सकती। एक माँ अगर मान लीजिए सामान्यतः घर में एक अकेली औरत है, 10 बच्चों के खाने पीने में ही उसका समय व्यतीत होगा, क्या उनके मानसिक विकास पे या शारीरिक विकास पे वो योगदान दे पाएगी? कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए भी एक नियंत्रित परिवार का होना जरूरी है, और संस्कृत में ही कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति कहीं भी किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो सही सफलता की तरफ नहीं ले जाती। तो जनसंख्या भी एक सीमित दायरे में रहे तो देश का विकास संभव है, और ये कहना जहाँ जनसंख्या बिल्कुल नहीं है वो भी देश के विकास में अहित है, लेकिन हमारे जैसे देश के लिए ज़रूरी है कि हम नियंत्रित जनसंख्या के साथ आगे बढ़ें, परिवार नियोजन हो और लिंग की समानता पे भी ध्यान दें। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के की तलाश में 10 लड़कियां घर में आ रही हैं, तो ऐसे में भी जो लड़का आएगा भी उसके लिए भी अगर समानता देखिए तो 10 बहनों की जिम्मेदारी परिवार को आगे बढ़ाना, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। तो वास्तव में हम उस लड़के के साथ भी कोई न्याय नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हमारे ध्यान से अगर देखा जाए

0: तो जनसंख्या का नियंत्रित होना बहुत जरूरी है।
1: इस दिवस का महत्व क्या है, क्यों लगा कि एक दिन ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए जनसंख्या के बढ़ने घटने के जैसे मुद्दे को लेकर?
0: देखिए सचमुच पूछे तो सृष्टि जो है पुरुष महिला के सम्मिलन से और परिवार बढ़ता है। परिवार जो है बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे भारत में, और हम मानते हैं कि परिवार के पोषण वर्धन और उसके कल्याण से ही राष्ट्र का कल्याण है। कि अगर हम इकाई को ध्यान में रखें तो परिवार एक इकाई है जो फिर जा करके समाज बनेगी, समाज के बाद वो राष्ट्र बनेगा। अगर परिवार स्वस्थ है तो समाज भी और राष्ट्र भी स्वस्थ है। तो ये सब अगर ध्यान में रखें तो हर व्यक्ति विशेष को सोचना चाहिए कि हमारा परिवार कैसे संगठित हो, परिपुष्ट हो, उसका संवर्धन कैसे हो, हर व्यक्ति को उसका अधिकार प्राप्त हो। इसलिए एक जनसंख्या दिवस, अगर सामान्यतः हम जनसंख्या कह रहे हैं लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, जनसंख्या केवल एक व्यक्ति से तो नहीं हो, जन की संख्या है। तो जहाँ बहुत सारे लोग सामूहिक रूप से मिलते हैं वो परिवार बन जाएगा, और परिवार के बाद फिर वो समाज बनेगा, एक फिर राष्ट्र बनेगा। तो एक तरह से अगर देश को भी देखें तो वो एक परिवार है, वो भी जनसंख्या का ही एक मूल, अगर ध्यान से देखिए तो एक वृक्ष है। मूल अगर जड़ हम जन को लेते हैं तो वो वृक्ष हो गया। तो इस तरह राष्ट्र के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए मूल का इकाई का सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जनसंख्या दिवस सोच में, इसमें आप देखिए बहुत सारी तथ्य जुटे हैं, केवल संख्या नहीं जुड़ी है, परिवार का नियोजन जुड़ा है, मातृ स्वास्थ्य जुड़ा है, इसके अलावा लिंग की समानता जुड़ी है, लड़कियाँ जितनी लड़के उतने होने चाहिए, हमारे लिंग जो है वो हमेशा असमानता देखने को मिलती है, तो ये है। और उसके साथ ही देश में गरीबी जो पॉवर्टी है वो बहुत सबसे बड़ी किसी बेरोजगारी, गरीबी के साथ ही अशिक्षा आएगी, बेरोजगारी आएगी, गरीबी आएगी, और किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में ये सभी जो होते हैं वो बाधक होते हैं। तो इसलिए जनसंख्या दिवस का मनाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मानव को अपने जनाधिकार से, मानव अधिकार से परिचित होने के लिए भी आज के दिवस पे, विशेष रूप से 11 जुलाई को ही एक ऐसा दिवस जिस पे इस विषय पे मंथन हो, ताकि लोग जानें कि अगर हम सीमित रहते हैं तो हम शक्तिशाली रहेंगे और राष्ट्र के कल्याण में, क्योंकि आपको क्वालिटी की बात है क्वांटिटी की नहीं, यही जान लीजिए कि आप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। संख्या बहुत हो सकती है लेकिन सीमित संख्या अगर सबल है, अच्छी है, तो हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते
1: हैं। इस बार की जो थीम निर्धारित की गई है वो है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना है आज और भविष्य के लिए, इससे हमारे क्या काम कर रहे हैं?
0: देखिए जो बच्चे आज हो रहे हैं वो 10-15 साल बाद युवा भारत होगा, युवा देश हो। और हमेशा से कहा गया है युवा राष्ट्र का निर्माता है, कर्ता धर्ता है और भाग्य विधाता भी है। तो एक तरह से अगर स्वस्थ युवा है तो लोकतंत्र के वहाँ से शुरू करते हैं। तो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अपने जो प्रतिनिधित्व की सही चुनाव करेगा, पहली बात। और पढ़ा लिखा है तो समाज अपने परिवार को भी आगे बढ़ेगा। मानसिक आजकल देखिए बहुत सारी ऐसी उच्छृंखलताएँ हो रही हैं समाज में, जो आज आप बहुत सारी चीज़ें आप खबर सुन रहे होंगे, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो अगर हमारा
1: विसंगति
0: जी हाँ बहुत सारे हाँ ये तो ही जैसे जो पहले जो एक होती थी, एक संस्कार परिवार में होता था या एक मर्यादा होती थी, वो मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो युवा जो है वो शक्ति है जो बहुत परिवर्तन ला सकता है। हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी देखा, भगत सिंह 23 वर्ष के थे, हमारे बहुत बड़े उदाहरण हैं हमारे विवेकानंद जी जो विदेश में जाके देश की संस्कृति को उन्होंने शिकागो में रखा। तो इसीलिए युवा जो है देश की आशा है, उनसे हम आकांक्षाएँ रख सकते हैं कि देश को कैसा बनाएं, उसको साकार करने में, देश को एक नया रूप देने में, उसकी प्रगति में और एक स्थायित्व। क्योंकि हम भारत देश में प्राचीन समय से हम सुनते आए हैं कि हम जो है मूलतः सनातन धर्म के मानने वाले हैं और सनातन अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसे धर्म को मानने वाले हैं जहां रोक टोक नहीं है, ईश्वर की सार्थकता में विश्वास करते हैं और परोपकार को ही अपना मूल धर्म मानते हैं। तो परोपकार की भावनाओं से, मानवीय भावना से जो हमारा युवा अगर आगे आता है तो उनसे हमारी यही आशा और आकांक्षा रहेगी, उसी को वह आज साकार करे तथा भविष्य उन पर ही निहित है। इसको ध्यान में रखते हुए ये 11 जुलाई को जो आज आने वाले समय में जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इसका थीम भी है कि युवाओं की आशा और आकांक्षाओं को साकार करना और आज और भविष्य के लिए। तो उनकी अगर आशाएं फलदायी होती हैं और उनकी अपेक्षाएं देश से क्या है या उनकी क्या आकांक्षाएं, अगर उनके उसको साकार किया जाएगा और एक स्वस्थ युवा समाज की उत्पत्ति

0: होगी तो राष्ट्र अवश्य आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा के हाथ में ही सब कुछ निर्भर करता
1: क्या
0: है।
1: कहना चाहेंगे सभी श्रोताओं से?
0: युवाओं से मेरी यही कहना है कि पहले तो आप बहुत ही उच्च राष्ट्र के में जन्म लिए हैं। एक भारत वर्ष में जन्म लेना अपने आप में गर्व का विषय है, इस बात को आदमी को मानना चाहिए। क्योंकि सभी जगह अगर ध्यान से देखें तो हर देश में एक अपना देश ऐसा है जहां हर तरह की ऋतुएं हैं, मौसम है, हर तरह के लोग हैं। अगर हम अपनी संस्कृति के मूल में जा कर के देखें तो हम एक श्रेष्ठ आर्य समाज, मतलब समाज की स्थापना कर सकते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसे जो हम श्रेष्ठ जेनेटिक्स को लेकर जन्मे हैं, हमारे पास इतने हमारे देवताओं ने इस भूमि में जन्म लिया है, तो ऐसे युवाओं को अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए। अगर हमें अपने देश के प्रति गर्व होगा तो स्वाभाविक है हम महत्वाकांक्षी बनेंगे। अतीव महत्वाकांक्षी नहीं, महत्वाकांक्षा रखें, देश के हित में योगदान करें और अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को देश को समर्पित करें, क्योंकि देश राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। और मुझे विश्वास है कि जो आज के युवा हैं उनकी सोच बहुत अलग है। नई जनरेशन जो है वो दूसरे ढंग से सोचती है, और हमने कुछ 15-20 सालों में ये परिवर्तन देखा है कि अपने मूलचूर परिवर्तन देखने को मिला, कि हमने ज्ञान विज्ञान और अपने प्राग ऐतिहासिक जितने भी हमारी चीज़ें हैं हमने उस पर अपने गर्व अनुभव किया, माना है कि हमारा राष्ट्र किसी और राष्ट्र से कमतर नहीं। तो ऐसी भावना अगर मन में है, और साथ ही मानवीय मूल्य कि प्रेम भावना बहुत ज़रूरी है। हमारा बौद्ध धर्म जो बोलता है अहिंसा परमो धर्मो, इस बात को हमेशा याद रखें। और कहीं ना कहीं हम एक अच्छे इंसान बन के आएँ, तो मेरे युवाओं से बस यही प्रार्थना रहेगी कि एक बेहतर इंसान बने। हाँ, योग्य इंसान अलग चीज़ है, लेकिन बेहतर इंसान योग्य भी हो जाएगा तो हाँ तो ये बेहतर इंसान का मतलब है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। ऐसी भावना से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें, और मेरा विश्वास है कि आप जैसी शक्ति, क्योंकि कहीं बुद्धिमत्ता में कहीं से भी कम नहीं, आज की युवा जो पीढ़ी नहीं आ रही है उनको सुनना चाहिए, और हम जैसे लोगों को भी तैयार होना चाहिए उनके साथ अपने विचार का साझा करें। क्योंकि बहुत सारे विचार अंदर तभी रह जाते हैं जब उस पर मंथन नहीं होता। तो मेरा बहुत सारी शुभकामनाओं युवाओं के लिए, क्योंकि राष्ट्र की उन्हीं के कंधे पे है, और वास्तव में आने वाले वर्षों में हम एक समृद्ध संपन्न राष्ट्र की परिकल्पना उन्हीं के आधार पर कर सकते हैं।

प्लास्टिक है। अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। 3,556 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। मीटर लगवाने के एवज में अतिरिक्त वसूल गए 12 लाख रुपए इसी माह लौटाएगा विद्युत निगम। स्मार्ट मीटर लगवाने वाले जिले के 3,556 उपभोक्ताओं को जुलाई में बड़ी राहत मिलने जा रही है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने नए स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान अतिरिक्त वसूली गई करीब 12 लाख रुपए की धनराशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। यमुना नदी में यात्रियों की सुरक्षा नाविकों के हित के लिए प्रशासन जल्दी खाका तैयार करेगा। इस आशय की घोषणा उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 के प्रारूप को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण विचार विमर्श किया गया। 2 दिन बाद खुला मौसम, धूप खिलने से जनजीवन हुआ सामान्य। लगातार 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश के बाद शुक्रवार को मौसम साफ हो गया। सुबह से ही बादलों के धूप के बीच आंख मिचोली का दौर चलता रहा। दोपहर में चटक धूप निकलने से लोगों का राहत के साथ उमस का भी एहसास हुआ। बारिश नहीं होने से पिछले 2 दिनों से प्रभावित जनजीवन सामान्य पटरी पर लौट आया। बाजारों में फिर से चहल पहल दिखाई दी। बारिश के मौसम में बदलता तापमान, बड़ी उमस, नवजात शिशुओं की सेहत पर भारी पड़ रहा है। जिला और महिला अस्पताल सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर खांसी, सर्दी, बुखार, डायरिया जैसी समस्याओं से पीड़ित नवजातों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही के लिए शिशुओं के लिए गंभीर संक्रमण कारण बन सकते हैं। जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमन के अनुसार नवजातों को रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। ऐसे मौसम में अचानक बदलाव, गीले कपड़े, ठंडी हवा, स्वच्छ वातावरण से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से वायरल संक्रमण, निमोनिया, गले का संक्रमण, डायरिया के मामले इस मौसम में अधिक देखने को मिलते हैं। महिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि नवजात को कूलर, एसी की सीधी हवा से बचाएं, कमरे का तापमान सामान्य रखें, शिशु को मौसम के अनुसार हल्के सूती कपड़े पहनाएं, बारिश में बाहर ले जाने से बचें, शिशु को स्तनपान नियमित रूप से कराते रहें ताकि माँ का दूध संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि नवजात को तेज बुखार, दूध संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण निभाता है। यदि नवजात को तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, दूध पीने में कमी, लगातार रोना, उल्टी जैसी शिकायतें हो तो घरेलू उपचार के बजाय चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। आज डालते हैं एक नज़र आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं समेटे रहता है। 1346 में लग्जमबर्ग के चार्ल्स चतुर्थ को रोमन साम्राज्य का शासक चुना गया। वह नीदरलैंड और डैनिश के बीच रक्षा संबंधी 1673 में हस्ताक्षर हुए। वहीं सेवा मार्केट क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल 1879 में बना। क्रिकेट विल्फ्रेड लॉरियर ने 1896 में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मंगोलिया ने 1921 में चीन की आज़ादी की खोज करी। वहीं हॉलीवुड बॉल की शुरुआत 1922 में आज ही के दिन हुई। और आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1977 में बैटल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्षों के सफर में नित नए आयाम स्थापित हुए। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या सहकारिता का क्षेत्र हो, या फिर काव्य का क्षेत्र हो, कविता का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, सब जगह अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के माध्यम से आकाशवाणी ने लोगों के न केवल मनोरंजन किया, उनके ज्ञान में भी इजाफा किया है। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत आपसे कहना चाहेंगे, अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, घर का कूड़ा नदी नालों में ना डालें, क्योंकि यही गंदगी बीमारियों को नौता देती है। अपने घर के साथ साथ अपने गली मोहल्लों को भी साफ रखें। कहीं भी पानी ना भरने दें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे मक्खी मच्छरों के फैलने का अंदेशा बना रहे। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें और सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। और इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति दे रही थी सुरभि शर्मा, संयोजन ओपी सिंह का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है विशेष रूपक, जनसंख्या नियंत्रण आपदा में परिवार नियोजन। आलेख जय सिंह का है, वाचन कर रहे हैं देवराज, कृष्ण दीक्षित और राजेश शर्मा। प्रस्तुति ओपी सिंह की है।

0: विराट ब्रह्मांड, अकल्पनीय गतिमान व्यवस्था, समय, चाल और चेतना से अभिभूत एक अनुशासित प्रकृति का परिवर्तन चक्र, जिसके केंद्र में स्थित मानव कर्म, ज्ञान और योग की चेतना को संजोए प्रकृति चक्र का एक ऐसा माध्यम जिसने प्राकृतिक संरचना से परे भौतिक संसार की रचना में अपना सर्वस्व लगा दिया।
1: परिणामतः मानव कालांतर में भौतिकवादी अस्थिर और अस्थाई को ही आसक्तिमय भाव से स्थाई समझने की भूल कर बैठा और उसने प्राकृतिक संसाधनों का न केवल दोहन किया बल्कि प्रकृति के नियमों में भी हस्तक्षेप की असफल चेष्टा की।
0: इसका फल मानव को प्राकृतिक प्रकोपों, भुखमरी, अस्थिर मौसम, असंतुलित होते पर्यावरण के रूप में मिलने लगा। भूमि पर रसायनों के अधिकतम प्रयोग ने खाद्य श्रृंखला और हरितिमा को गंभीर हानि पहुंचाई।
1: फलस्वरूप अनेकों गंभीर संक्रमणों और रोगों ने मानव पर घातक प्रहार करना आरंभ कर दिया। सूक्ष्म जीवों की इस दुनिया से अनजान मानव को सदियों से गंभीर रोगों से दोचार होना पड़ा। परिणामतः जन और धन हानि के साथ ही मानसिक और शारीरिक यातनाओं से मानव को गुजरना पड़ा।
0: इन समस्त बातों से हमारा तात्पर्य आज के दौर में चल रही कोविड-19 महामारी और उसके संक्रमण के साथ हुए परिवर्तनों और प्रभावों के साथ ही मानव जाति की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर भी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में अवसर वाला संदेश भी हमें दिया है।
2: भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे जीतेगा भी, आगे बढ़ेगा भी। भारत इस बड़ी आपदा को आपदा समझ करके रोते बैठने के पक्ष का नहीं है। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा।

आपदाएं हमें अवसर प्रदान करती हैं, चाहे ये अवसर आर्थिक रूप से आधार देते हों या सामाजिक रूप से। जब तक हम प्राकृतिक रूप में पर्यावरणीय घटकों के संरक्षक नहीं बनेंगे, मानव अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा।

विश्व के आगे आज अनेकों चुनौतियां हैं, जिनमें से प्रमुख है आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या। धरती पर सब कुछ सीमित है, जल, जमीन, ईंधन, सब कुछ। लेकिन सीमित होते हुए भी इनकी मात्रा इतनी प्रचुर है कि जीव जंतु सैकड़ों साल से इस धरती पर आराम से रह रहे हैं। लेकिन हालात बदल चुके हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी पूर्ति के लिए इन संसाधनों का दोहन ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी भरपाई संभव नहीं है।

0: जनसंख्या के इस दबाव को आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि साल 1989 से 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 1987 में दुनिया की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा छुआ था। इस आंकड़े को उस वक्त एक चेतावनी के रूप में लिया गया था। वर्ष 1950 में दुनिया की आबादी 250 करोड़ थी। इसके बाद सिर्फ 37 वर्षों में ये संख्या दोगुनी हो चुकी थी। बताते हैं सरोज कुमार।
1: हकीकत ये है कि रीसेंट एस्टीमेट्स ये बता रहे हैं कि इंडिया 2029 में ही चाइना को क्रॉस करके नंबर वन हो जाएगी। इवन कुछ एस्टीमेट ऐसे हैं जो उसको और नीचे ला करके 2024 कर चुके। लेकिन सबसे इनकरेजिंग बात यह है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हमारा प्रोग्राम काफी बढ़िया काम कर रहा है। हमारी केवल प्रॉब्लम है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जो सक्सेस रेट है, हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, वो उस नजरिए पे नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से प्लान किया गया।
2: विश्व जनसंख्या दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। ये आयोजन वर्ष 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा स्थापित किया गया था। क्या ये दिवस हमारे लिए एक स्मरण संदेश है? बता रहे हैं मनमोहन शर्मा।
3: विश्व जनसंख्या दिवस हम हर साल मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। ये स्लोगन अगर आपको पता है, ये 1987 में यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी UNFPA ने इसको शुरू किया था। एंड द रीजन वाज दैट वेरी डे ऑन द 11th ऑफ जुलाई द वर्ल्ड अटेन्ड द पॉपुलेशन ऑफ 5 बिलियन। फ्रॉम दैट डे देयर वाज एन अवेकनिंग इन द वर्ल्ड कि भाई अभी तो हमको कुछ करना चाहिए। एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स कीपिंग दिस नंबर इन कंट्रोल, ताकि आगे जाके हमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लैंड इज लिमिटेड एंड ऑल द साधन्स, ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग इज लिमिटेड। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड पॉपुलेशन।
0: पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और ये वृद्धि कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसलिए परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता में वृद्धि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है।
2: संयुक्त राष्ट्र संगठन के अनुसार वर्ष 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 अरब के अंक तक पहुंच गई। वर्तमान में ये लगभग 7.8 अरब है और इसके सन 2030 तक 8.5 अरब और 2050 तक 9.7 अरब तक वृद्धि होने की संभावना है।
0: इसके लिए विश्व के अनेक देशों की सरकारों ने कई कार्यक्रम लागू किए हैं जिनका पालन करना लोगों के लिए जरूरी है। इस समस्या का कारगर उपाय है कि हम सब मिलकर जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास करें।
2: इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी सक्षम राष्ट्र और परिवार

0: की पूरी जिम्मेदारी थीम पर मनाया जा रहा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी से मुकाबला करते हुए बहुस्तरीय रणनीति अपनाते हुए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अवांछित गर्भधारण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक है।
0: परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों और परिवार नियोजन सेवाओं की सूचनाएं, परामर्श और सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान पर ध्यान दिया गया है। इस दिवस पर समुदाय को संवेदनशील बनाने और परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत करने का उपयुक्त अवसर है।
1: कोरोना संक्रमण के विश्वव्यापी प्रभाव के कारण संसार भर में महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है।
0: एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 60% महिलाएं अपने कार्य के माध्यम से अनौपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था को अपना योगदान देती हैं। संक्रमण के इस दौर में महिलाओं पर आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए इस वर्ष महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है।
1: भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो भारत दुनिया के सबसे आबादी वाले देशों में दूसरे स्थान पर है, जो जल्द ही पहले स्थान पर आ जाएगा। जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण रोजगार, आवास और पर्यावरण की समस्याओं के साथ साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार ये समूची मानवता विनाश के कगार पर पहुंच सकती है। बताते हुए पूनम मुटरेजा,
2: ये सोच के पॉपुलेशन डे मनाना चाहिए कि इस दिन हम प्रण लें कि हम आगे और अपना फैमिली प्लानिंग मजबूत कैसे करेंगे प्रोग्राम। दूसरा, हम अच्छी तरह से एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कहें, आप रिव्यू कहें, कि हमारी नीतियां कैसी रहीं, हमारी जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, पिछड़े इलाकों में जो रहती हैं, जहां हेल्थ सर्विसेज बहुत ही कम है, तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी जाहिर है कम होंगी, इन पे हम कैसे और जोर दे सकते हैं।
0: भारत में विश्व भर के 16% लोग रहते हैं, जबकि इसका क्षेत्रफल विश्व भूभाग का केवल 2.42% है। इतना ही नहीं, भारत में हर व्यक्ति के हिस्से में 0.39 हेक्टेयर भूमि आती है, जो निश्चित रूप से गंभीर स्थिति है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि के स्थिर होने और जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्र लगातार घट रहा है।
1: वर्ष 1950-51 से वर्ष 1990-91 की अवधि के बीच ये क्षेत्रफल 44.40% कम हो गया है। इस कमी के प्रभाव को उन्नत किस्मों के बीजों के प्रयोग, सिंचाई क्षमता में वृद्धि और खादों के प्रयोग से कम करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु जनसंख्या वृद्धि की वजह से इस दिशा में उतनी सफलता अभी नहीं मिल पाई है। विचारों के साथ पूनम मुटरेजा।
2: हमारे कंट्री में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज द ओल्डेस्ट प्रोग्राम, एंड आई थिंक वी हैव टू टेक अ लीड टुडे इन हैविंग द बेस्ट फैमिली प्रोग्राम व्हिच इज राइट्स बेस्ड। राइट्स बेस्ड मींस फर्स्ट ऑफ ऑल द वुमन नॉट ओनली हैज इंफॉर्मेशन, एवरी वुमन हैज एक्सेस टू अ डिफरेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग व्हिच इज मोस्ट सूटेबल फॉर हर।
0: भारत दुनिया का पहला देश है जिसने साल 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वर्ष 1952 की अपनी ऐतिहासिक शुरुआत के बाद से परिवार नियोजन कार्यक्रम में नीतियां और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार सरकार ने इसमें परिवर्तन भी किए हैं। बातचीत के सिलसिले के साथ पूनम मुटरेजा।
2: जो गरीब परिवार है, मध्यम वर्ग का परिवार

0: परिवार है वो 80-90% अपना एक्सपेंडिचर फूड पे करते हैं, तो खाना इतना महंगा हो गया है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दो बच्चे और से ज्यादा, और लोगों की एस्पिरेशंस बदल गए हैं। ये जो रीच हुआ है मीडिया का, आज की स्थिति में जो हमारी जनता है, चाहे गरीब पिछड़े इलाके में हो, उन्होंने देखा है कि बेटर हाफ, हाउ डज द बेटर हाफ लिव इन इंडिया, उनके कितने बच्चे होते हैं, वो कैसे एजुकेशन पे जोर देते हैं, तो वो भी अपने बच्चों के एजुकेशन पे पूरे देश में आप देखेंगे फैमिलीज चाहती हैं हमारे कम बच्चे हों और उनकी पढ़ाई अच्छी हो।
1: इसी क्रम में अप्रैल 2018 से सरकार ने जनसंख्या के अनुसार

0: 2018 से सरकार ने जनसंख्या के अनुसार अहम 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के 146 जिलों में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि परिवार के प्रावधान के माध्यम से गर्भ निरोधकों तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
1: इसमें योजना सेवाएं, प्रचार योजनाएं, जागरूकता निर्माण गतिविधियां, वस्तु सुरक्षा, क्षमता निर्माण और गहन निगरानी जैसे बिंदु शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के लिए 100% सहायता प्रदान करती है, बताते हैं मनमोहन शर्मा।
2: सरकार को इसलिए होता है कि उसकी कमिटमेंट जो है, उसके जो लोग हैं उनके प्रति, उनके जो सिटीजन हैं उनके प्रति, अच्छी हेल्थ के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी कमिटमेंट उनकी सरकार की रिमाइंडर के तौर पे ये मनाया जाता है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना हमारे रिसोर्सेज डिवाइड होंगे, और अब छोटे देशों को देखिए जहाँ जनसंख्या नहीं है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जनसंख्या कम है, उन छोटे कंट्रियों में देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। उनके रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छी तरह यूटिलाइज हुए हैं लोगों की डेवलपमेंट के लिए, देश की डेवलपमेंट के, लोगों के वेलफेयर के लिए हुए हैं। तो रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं, जो हमारे को रिसोर्सेज चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, वो उतने नहीं मिल पाते हैं।
0: कम जन्म दर अधिक विकास। जी हाँ, अगर परिवार में बच्चों की जन्म दर कम रहती है तो बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण और विकास की दर भी अच्छी बनी रहती है। इसी बात को अपने संदेश में परिलक्षित किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
3: हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भलीभांति समझता है। अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भलीभांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है।

0: बाजारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में बढ़ती आबादी किसी भी देश के लिए उसकी ताकत, उसकी पूंजी मानी जाती है और इसके कई फायदे बताए जाते हैं। लेकिन जब यही आबादी संसाधनों पर बोझ बनने लगे तो ये चिंता का सबब है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि सन 2050 तक भारत दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा, यानी चीन को भारत पीछे छोड़ देगा।
1: 2001 से 2010 के दौरान देश में 18.14 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या 1.4% की वार्षिक दर से बढ़ती है, जबकि चीन की आबादी 0.6% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि भारत में जनसंख्या वृद्धि की यही रफ्तार रही तो सन 2050 से पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा।
0: क्या बाजारवादी व्यवस्था में बढ़ती आबादी कुछ योगदान दे सकेगी? क्या इसका प्रभाव विपरीत हो सकता है?

0: प्रमुख अर्थशास्त्रियों के विचारों के साथ प्रवीण कुमार।
1: बाजारवादी व्यवस्था, ये व्यवस्था बड़ी पुरानी है। जो वर्तमान व्यवस्था है ये नव उदारी बाजारवादी व्यवस्था है, लेकिन अगर हम जब से कहें पूंजीवाद तब से बाजार का जो एक वर्चस्व रहा है वो रहा है। माल्थस एक बड़े चर्चित अर्थशास्त्री थे, तो जिन्होंने बहुत पहले तकरीबन 200 वर्ष पहले कहा था कि साहब बड़ी भयंकर समस्या है इस तरह से अगर आबादी बढ़ती जाए, चूंकि आबादी जो है उसका जो विकास होता है जो ज्योमेट्रिक रेट पे होता है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए अर्थशास्त्र को जो डिसिमल साइंस कहा जाता है उसके पीछे एक ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा थी। तो ये चिंता तभी से चल रही है।
0: इस समस्या के प्रति हमारी भूमिका क्या हो सकती है, साथ ही सामाजिक संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है, विचारों के साथ अजय कुमार गुप्ता।
2: जिस तरह के शायद सख्त कदम उठाने की जरूरत है सरकार की तरफ से नहीं उठाए जा सकते, इसके लिए जरूरी है कि समाज में हम शिक्षा के माध्यम से और कुछ सामाजिक ग्रुप में एनजीओ वगैरह की तरफ से हम लोगों को मोटिवेट करके एजुकेट करके लोगों को प्रेरित करें कि हमारे को जो आज हम जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं कल ये समस्या हमारे लिए बड़ी विकराल हो सकती है। चीन में जैसे हमने देखा, चीन अपनी जनसंख्या को की दर को काफी हद तक नियंत्रित कर पाया, लेकिन हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। यदि हमारे यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो हमारी आस्था है उसके चलते हुए मुझे लगता है कि सिविक सोसाइटी के स्तर पे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है।
3: सरकारी प्रयास प्रचार प्रसार की भूमिका के साथ ही केंद्र में स्थित होते हैं। स्वयं नागरिकों की भूमिका, वहीं ग्रामीण अंचलों में जागरूकता का भी अहम महत्व है कि जनता को जागरूक बनाया जाए, तभी विकास की संभावनाओं को बल मिल सकेगा। अपने विचारों के साथ हैं प्रवीण कुमार।
1: विकास जो है, खास करके सही किस्म का विकास जहां शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हो, तो वो दोनों जो होता है इस मामले में बड़ा कारगर और बहुत सार्थक होता है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि डेवलपमेंट जो एक ब्रॉड बेस्ड हो, शेयर्ड डेवलपमेंट हो, ये बाकी जो प्रयास सरकारी तौर पे होते रहते हैं बहुत ही अच्छे प्रयास हैं, उसको लेके हमें संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए, पूरक होने चाहिए।
0: जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करना स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत है। क्या इसे सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए अथवा शिक्षा के प्रचार के साथ स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया इसे स्वयं नियंत्रित कर सकेगी? इन्हीं विचारों के साथ शंकर अग्रवाल।
4: कि अगर हम कोशिश करें कि जनसंख्या कंट्रोल हो, ये बहुत कारगर भी नहीं होता है, बहुत डिजायरेबल भी शायद नहीं होगा। धीरे धीरे जो लोग ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, ज्यादा प्रॉस्परस हो जाते हैं, वो परिवार को सीमित कर देते हैं। तो अगर हम लगातार अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर अगर लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो कोई उनको कहने वाले की आवश्यकता नहीं है कि तुम अपने परिवार को सीमित रखें, वो अपने परिवार को स्वयं सीमित रखें। दूसरी बात, संसाधन सीमित। हमारा देश बहुत बड़ा है और संसाधन हमारे यहाँ कमी नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हम संसाधन को कैसे प्रयोग में लाएं। ये बात एक और भी है कि जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी और एजुकेशन बढ़ती है, लोग बाग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में और स्मॉलर टाउन से बिगर टाउन में, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में हर जगह हुआ। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर वन, सेकेंडली सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, एंड थर्ड बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
3: प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का आर्थिक विकास की प्रक्रिया में गहन योगदान होता है। जबकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और मानवीय संसाधन अकुशल, अशिक्षित और स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम होने पर विकास का पहिया चल नहीं सकता। उसके लिए मानवीय संसाधन के रूप में किन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है, इन्हीं विचारों को रखते हुए मनोज कुमार।
5: मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट क्रिटिकलिटी है कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स, वो एक ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसके कारण से अपने आप ही जॉब्स और बाकी सब चीजें आएंगी। सो दैट ऑट टू बी द फर्स्ट स्टेप, और उसमें परिवार सीमित संतुलित रहता है और बच्चे की सही प्रकार से परवरिश हो पाती है, तब उसका जो कॉग्निशन होना चाहिए, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो सब सुधरेगा। अभी अगर हम लोग अनमेट नीड ही अगर खत्म हो

0: जाए, मतलब जो लोग अपनी कॉन्ट्रसेप्शन की सर्विसेज चाह रहे हैं उसके अनुरूप उनको सर्विसेज मुहैया हो जाएं, तो ही टीएफआर 1.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब डिमांड के स्तर पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग आबादी फैलाने जा रहे हैं और उनको एजुकेट करने की जरूरत है या डंडा लगाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। वी जस्ट हैव टू इंश्योर एक एक्सटेंसिव अवेयरनेस होना चाहिए और डिफरेंट मेथड्स बाय विच वो लोग अपने परिवार सीमित करने का जो चाह रहे हैं उसमें हम लोग मददगार हो सकें प्रभावी ढंग से। इसको अगर हम कर देंगे तो जहां तक आबादी का सवाल है उसमें कोई इशू नहीं है।
1: कोविड 19 संक्रमण की विभिन्न लहरों के दौरान समस्त गतिविधियों पर लगे लॉकडाउन के साथ ही यूनिसेफ समेत तमाम एजेंसियों ने अनुमान लगाया था कि दुनिया में जन्म दर तेजी से बढ़ेगी, जिसका असर अगले वर्ष आबादी पर दिखाई देगा।
2: जबकि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सर्वे के अनुसार कोरोना काल जनसंख्या में उछाल की बजाय गिरावट का कारण बनेगा। और यूरोपीय देशों की बात करें तो 18 से 34 वर्ष की उम्र के 50 से 60 प्रतिशत युवाओं ने परिवार आगे बढ़ाने की योजना को एक वर्ष के लिए टाल भी दिया है।
1: लेखिका फ्रासेपा लूसी के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य पाबंदियों के कारण बेबी बूम यानी भारी संख्या में बच्चों के पैदा होने की कोई संभावना नहीं है। सर्वे में फ्रांस और जर्मनी के 50% युवा दंपतियों ने महामारी के कारण परिवार में संतान को लेकर ना सोचने की बात कही है, जबकि 23% युवा इसके पक्ष में थे।
2: यूनिसेफ ने भारत में मार्च से दिसंबर के मध्य 2 करोड़ और चीन में 1.3 करोड़ बच्चों के जन्म का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि बदले हालात में इसमें कमी का अनुमान है। भारत में 13 राज्यों में प्रजनन दर काफी नीचे आ चुकी है।
1: सेव द चिल्ड्रन के प्रोग्राम एवं पॉलिसी इंपैक्ट के निदेशक आनंदित राय चौधरी के अनुसार भारत के शहरी व ग्रामीण परिवेश में कोविड 19 का प्रभाव जन्म दर पर अलग अलग दिख सकता है। कुपोषण, टीकाकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की जाए तो कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ा है। ऐसे में युवा परिवार वृद्धि के विषय में क्या कदम उठाते हैं, ये आने वाला समय ही तय करेगा।
2: बहरहाल कोरोना काल में बच्चों को जन्म देकर उन्हें परिवार मुश्किल में डालना नहीं चाहते। बेरोजगारी और अर्थाभाव की वजह से युवा दंपत्ति भी इसके पक्ष में नहीं है। डे केयर होम और क्रेच बंद होने की वजह भी जन्म दर कमी का कारण रही। कोरोना के संपूर्ण टीकाकरण तक भी दंपत्ति बच्चे की कामना नहीं कर रहे हैं।
1: कोविड 19 के संक्रमण काल के दौरान कुछ सकारात्मक पक्ष भी हमारे समक्ष रहे हैं, जिनके कारण आपदा में अवसर की उक्ति को बल मिला है। आपदा ने हमें आत्मनिर्भरता, पर्यावरण जागरूकता, सौहार्द, समभाव और सहयोग की सीख तो दी ही है, साथ ही डिजिटल लेनदेन, डिजिटल शिक्षा, आत्मनिर्भरता, एकता और विकास के प्रति एक मजबूत इच्छा शक्ति भी प्रदान की है।
2: आइए विकास के इन सोपानों पर कदम बढ़ाने से पहले संकल्प लें छोटे परिवार का, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का, साथ ही कुशल और स्वस्थ मातृत्व का। परिवार की जिम्मेदारियां उठाएं और राष्ट्र को सक्षम बनाएं।

उपक जनसंख्या नियंत्रण आपदा में परिवार नियोजन, आलेख जयसिंह का था, वाचन कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित और राजेश शर्मा, प्रस्तुति रही ओपी सिंह की। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है एक ही फिल्म से। जी हाँ, आप पहुंचा है शनिवार, बिल्कुल सोचा सही आपने। मैं आपकी दोस्त दीपिका हूँ आज आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म अपने गानों के लिए बेहद प्रसिद्ध रही। तो ज़्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए बता देती हूँ आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म निकाह के बारे में। जी हाँ, 24 सितंबर वर्ष 1982 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। इसका निर्देशन किया था बी.आर. चोपड़ा ने, आलेख रहा अचला नागर का। अभिनेता इसमें रहे राज बब्बर, दीपक पाराशर, सलमा आगा, असरानी, हिना कौसर और इफ्तिकार खान। साथ ही इसका संपादन किया था एस.बी. माणे ने और संगीतकार थे इसके रवि, जिनके सारे ही गीत बेहद प्रसिद्ध और पसंद किए गए जनता के द्वारा। दोस्तों, फिल्म के गीत इतने अच्छे थे कि फिल्म ने बहुत सारे विवादों के बावजूद अपने गीतों से जनता के हृदय में एक अलग ही स्थान बना लिया था। क्या थे इस फिल्म से जुड़े हुए विवाद और क्या थी इस फिल्म के पीछे की बातें, जरूर बताऊंगी आपको। लेकिन पहले सुन लेते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है निकाह। कार्यक्रम लेकर मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीपिका हूं आपके साथ। तो दोस्तों, ये जो फिल्म थी निकाह, इसका लेखन किया था हमारे मथुरा के रेडियो स्टेशन पे कार्यरत श्रीमती अचला नागर जी ने। जी हाँ, ये हमारे ब्रजमंडल में ही कार्यरत थी, हमारे रेडियो स्टेशन पर ही कार्यरत थी। तो फिल्म की जो स्टोरी थी वो तलाक पर आधारित थी और इस बात को लेकर उस समय बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। शुरुआत में फिल्म का नाम रखा गया था तलाक तलाक तलाक, और जब ये बात पता चली विशेष समुदाय के लोगों को, या ये कहें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को, तो उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि आप हमारे समाज में ये जो एक रिवाज है उस पर जो मूवी बना रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसको लेकर बहुत लंबे समय तक विवाद चला और इस विवाद के बीच ही इस फिल्म का नाम तलाक तलाक तलाक से बदल कर निकाह कर दिया गया और फिल्म को रिलीज भी किया गया। अब आप समझिए, एक ओर विवाद चल रहा है फिल्म की स्टोरी को लेकर, उधर हॉल में लगी हुई है दर्शकों की बहुत लंबी लंबी कतारें और फिल्म का संगीत इतने बड़े लेवल का हिट हो चुका है कि उसे सुनना तो लोगों के लिए रोज की दिनचर्या में जैसे शामिल हो गया था। तो ये था इस फिल्म से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी का हाल। एक तरफ जहां फिल्म रोज सफलता के झंडे गाड़ रही थी, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही थी, उसके गानों को रेडियो स्टेशन, टेलीविजन और सभी जगह पर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा था, देखा सुना और पसंद किया जा रहा था, वहीं एक तबके में मूवी को लेकर असंतोष भी व्याप्त था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस फिल्म की स्वीकार्यता सब ओर होने लगी।

तो दोस्तों, अभी आपने ये जो गीत सुना, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार जीता था उस वर्ष सलमा आगा ने। सलमा आगा, जी हाँ दोस्तों, यही वो नाम था जिसने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। सलमा आगा एक स्टूडियो में एक गीत गा रही थी और गीत गाते ही उनके पास में एक शख्स आया और उसने उन्हें देखकर कहा, यही है मेरी नीलोफर। इस बात को सुनकर सलमा आगा को कुछ अजीब लगा और उन्होंने जानना चाहा कि वो शख्स कौन है। वो शख्स थे बीआर चोपड़ा, जिन्होंने देखते ही सलमा आगा को अपनी मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया था। इस तरह से लंदन में पली बड़ी सलमा आगा का भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ और पहली ही फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। हालांकि इसके बाद में आई उनकी कई फिल्में वो सफलता नहीं देख पाई जो उनकी इस पहली फिल्म ने देखी, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने उन्हें बहुत लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर दिया था और आज भी

हम इस फिल्म को देखते हैं या इस फिल्म के गीतों को सुनते हैं तो सलमा आगा का नाम अपने आप ही हमारे होठों पर आ जाता है, क्योंकि इस फिल्म के सभी गीतों में जो फीमेल वॉइस थी वो सलमा आगा की ही रही, साथ में गुलाम अली, महेंद्र कपूर और एक गीत में युगल स्वरों में साथ दिया था आशा भोसले ने। मैं बात कर रही थी फिल्म से जुड़े हुए विवाद के विषय में। इस फिल्म में मुस्लिम समुदाय को जो आपत्ति थी उसमें हाल यहां तक बिगड़ गए थे कि फिल्म को बनाने वालों को, फिल्म की स्टार कास्ट को भी धमकियां दी जाने लगी थी। उस समय भी सलमा आगा के पास में कई सारे धमकी भरे पत्र आते थे जिसमें उन्हें भारत छोड़ के यहां से चले जाने के लिए कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपना दमखम बनाए रखा और डटकर इन सभी हेटर्स को जवाब दिया। रातों रात स्टार बनने के बाद में सलमा आगा ने जो दूसरी फिल्में की वो इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, ये मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन उन्होंने अपना एक मुकाम फिल्म इंडस्ट्री में जरूर बना लिया था। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए डॉक्टर अचला नागर ने भी पुरस्कार जीता। साथ ही फिल्म को बहुत सारे क्षेत्रों में नामित किया गया था, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए बीआर चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सलमा आगा, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार के लिए हसन कमाल को नामित किया गया। हसन कमाल वो शख्स थे जिन्होंने फिल्म के गीत लिखे, साथ ही फिल्म के डायलॉग भी लिखे और इस फिल्म के डायलॉग भी बेहद प्रसिद्ध हुए।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका आपके साथ। दोस्तों, निकाह एक ऐसी फिल्म थी जिसने समाज में महिलाओं के अधिकारों के ऊपर बहस आरंभ की। एक ऐसी जागरूक करने वाली फिल्म जिसने कुछ कुरीतियों पर कुठाराघात किया, उससे होने वाले नुकसानों के विषय में बात की और बहुत सारी महिलाओं को ये संबल दिया कि वो अपनी बात को खुलकर रख सकें और एक स्वस्थ बहस को जन्म दिया। ऐसी फिल्में हमारे समाज में हमेशा बननी चाहिए जिनसे समाज को लाभ मिले, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है कि हमने किसी फिल्म को देखा, कुछ समय व्यतीत किया और भूल गए। कुछ फिल्में ऐसी शाहकार होती हैं जो वर्षों वर्ष तक अपना एक अस्तित्व बना के रखती हैं और अपना असर पॉजिटिवली समाज पर छोड़ती हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। फिल्म का नाम था निकाह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है।

अभी आपने सुना कैफी आजमी का लिखा हुआ यह गीत। संगीत दिया था मदन मोहन ने, स्वर मोहम्मद रफी और बलबीर के थे। फिल्म का नाम था हंसते जख्म।

अभी आपने सुना फिल्म नगीना का ये गाना, और इस गाने को स्वर दिया था मोहम्मद अजीज ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, सोनू निगम और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है मुस्कान, बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत निखिल विनय का है।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दिल तेरा आशिक। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण का गाया हुआ ये गाना। फिल्म का नाम है दिल जले। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत अनु मलिक का है।

अभी आपने सुना फिल्म तनु वेड्स मनु का ये गाना, और इस गाने को गाया था शफाकत अमानत अली ने। और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। कार्यक्रम गीत बात और SMS में जो संदेश हमारे पास आया है, सबसे पहले वो आया है शार्दुल शहर राजस्थान से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके सभी संगीत साथी। अगला संदेश हमें लिख भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतलमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है बुलडाणा महाराष्ट्र से राजू माठे और इनके सभी संगीत साथियों की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता जिला नांदेड़ कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर और इनके सभी परिवारीजन। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्बू अंसारी, डॉक्टर सोनू मदीबा, शफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और इनके सभी संगीत साथियों ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता रिंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये फरमाइश फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद शाहिद और इनके सभी परिवारीजनों की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश हमें लिख भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और इनके सभी परिवारीजनों की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजन सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया। अगला संदेश हमें लिख भेजा है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका, श्रीनिजा और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगली फरमाइश आई है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान बाबू की। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके सभी परिवारीजनों की, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म वापस का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये अगला संदेश हमारे पास आया है नरहन स्टेट फुटानी चौक से। लिखने वाले श्रोता ललन मिश्रा, नूतन, अमन पारा सर, आराध्या और लल्लू पंडित। ये फरमाइश हमारे पास आई है महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्री जायसवाल की। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है वीरम गांव से अजीत भावसागर, प्रमिला, भावेश, सन्नी और इनके सभी संगीत साथियों ने। ये संदेश हमें लिख भेजा है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमकर, प्रमोद, प्रदीप और इनके सभी परिवारीजनों ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और इनके सभी संगीत साथी। अगली फरमाइश हमारे पास आई है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगला संदेश गंडुड़वारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीर बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान अंसारी। ये संदेश हमें लिख भेजा है कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील, बब्बू, डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता काशी निवास नागपुर से प्रकाश रमांडे, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। ये संदेश दिल्ली से गोवर्धन बिहारी कॉलोनी चादरा से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, पंचकूला चंडीगढ़ से लिखने वाले श्रोता राहुल खुराना, रुचिता, केशु और रिधान खुराना।

ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम वसीम रूबीना आरिज नदीम शमीम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा। ये संदेश तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहद्दीन का मोहम्मद फजान मोहम्मद फरहान समायरा आजमीन गुड़िया और इनके सभी संगीत साथियों का। ये फरमाइश हमारे पास आई है राजनगर बिहार से नवीन सिंह ज्योति श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल रानी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता प्रदीप राज बहादुर शंभू और डुग्गू बाबू की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भेरवा से चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल की। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास श्रीमती करुणा आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है जिला बुलनाड़ा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े, उषा विशाल महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई। ये फरमाइश काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरेशे की। अगला संदेश लिख भेजा है सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, प्रीतेश और मैक्स ने। और ये फरमाइश हमारे पास आई है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार, ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, सिया, हर्षिता और निशांत ध्रुव की। अगला संदेश लिख भेजा है सौंगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र चौहान और हियांश कुमार चंदन ने। ये फरमाइश समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री की। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है दादरी गेट भिमानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलडाणा महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमित कुमार। ये संदेश लिखने वाले श्रोता एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल, तन्वी और अंकित कांगड़ा। ये संदेश हमारे पास आया है गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, शरीफ, बाबू अहद चाहत और इनके सभी परिवारजनों की। ये फरमाइश ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल यादव, अनसुईया, पवन राजा यादव, मंगेश, संध्या और स्वराज विराज की। अगली फरमाइश नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज और पीआर जैन। ये संदेश लिख भेजा है नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, नदयानंद, ओमकार साईं गायकवाड़ ने। ये फरमाइश छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राकेश सेन, सुरेश सेन, शुभम और अक्षय। ये संदेश आया है आजाद रोड सनावत से मोहम्मद असलम खत्री, मोहम्मद फारूक खत्री, मोहम्मद सिद्दीकी, आफिया राफिया, मोहम्मद अदनान खत्री का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी का गाया हुआ फिल्म काला बाजार का ये गीत।

0: सुन के मत वाले काले बादलों का शोर
1: झूम झूम।

ये संदेश हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार ने। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तेलंगाना वारंगल से खाजा फासीउद्दीन, अयाश, तबस्सुम, जुबेरिया और इनके सभी परिवारीजनों ने। ये संदेश हमारे पास आया है खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार वोडाना और इनके सभी संगी साथियों का। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। अगली फरमाइश राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्ण, राकेश जैन और इनके सभी संगी साथियों की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय और इनके सभी परिवारीजन। अगली फरमाइश झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक भाटिया की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कर्नाटका स्टेट से प्रकाश श्यामलाल और इनके सभी संगी साथी। अगला संदेश छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी और इनके सभी संगी साथियों का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और ये संदेश हमें लिख भेजा है गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल, बुल्की वाली और फलना झा का। ये फरमाइश आई है कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक की। अगला संदेश लिख भेजा है मंसूरी रोड बाजार मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने। ये फरमाइश छत्तीसगढ़ कोहका विलाई से प्रताप पांडे, रेखा पांडे और इनके सभी संगी साथियों की। ये संदेश छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, जूही इकबाल, दुखना सदफ, इमरान मेहमद फूलवाले की। ये संदेश राजनगर कांति निकेतन से मोहरा अलकाट और कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दीप्ति रानी, आफरीन रुखसाना। करणवीर हाउस भुच्चो कैचिया बठिंडा पंजाब से लिखने वाले श्रोता परम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर, दीपेंदर, वरिंदर, कुलदीप, दमन, अभिजीत और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश लिख भेजा है गुमला झारखंड से नजमुल हौदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम ने। ये संदेश मारहरा दरवाज़ा एटा से नबीब हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, शहनवाज, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम यशफ और इनके सभी संगीत साथियों का। अगला संदेश खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू, भाविका सिक्का और इनके सभी संगीत साथियों का। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर उमा देवी का गाया हुआ यह गीत, फिल्म का नाम है दर्द।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये फरमाइश हमें लिखबे जी है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग ने। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गणेशपुर गंजुड़वारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, सायरा फारूक, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवानी, सलोनी और पेंटर बाबू। अगला संदेश हमारे पास आया है नौगांव से महावीर, रेखा, रोशनी और इनके सभी संगीत साथियों का। अगली फरमाइश गांव गोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, नीमेत और इनके परिवारीजनों का। गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीयूष, कृष्णा, राधिका, पवन, नयन और इनके परिवारीजन। गांव नौधरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रमेश, सुरेश, सुनीला, रचना और भरतपुर से लिखने वाले श्रोता है सोनिया, अजीत, शिवांश, चुन्ना और इनके परिवारीजन। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर तलत महमूद के स्वर में फिल्म छाया का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट। बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
8: आराम से मैडम।
7: क्या
8: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
9: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
10: प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं प्रेमानंद शर्मा।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे प्रेमानंद शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
3: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री क्षेत्र और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
4: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी

0: सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृत पत्रिका का कार्यक्रम संस्कृत भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा घर आंगना। इसमें वार्ता प्रसारित की जाएगी बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम। वार्ताकार होंगी मोहिनी तोमर। अपराह्न 2:30 पर सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें एक विशेष कार्यक्रम होगा विश्व जनसंख्या दिवस पर। वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित का होगा, प्रस्तुति डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता भर्ती संख्या और रोजगार सृजन हेतु खाद्य प्रशिक्षण का योगदान। वार्ताकार होंगे विशन सिंह, भेंटकर्ता होंगे ओपी सिंह।

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा। प्रसंग होगा उद्धव जी की ब्रज यात्रा। कथाकार होंगे धर्मवीर अज्ञानी।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर भी ले सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर अंगना।

घर अंगना कार्यक्रम को सुनवे बारी हमारी सभी बहनान को विजयलक्ष्मी बहन की राम राम। बहनों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जाके हम सबन को बधाई। और बधाई काय बात की है बहनों, कि हम सब खूब पढ़ लिख के अपने पूरे सकल विश्व को नाम रोशन करें और एक आदर्श स्थापित करें। क्योंकि बहनों, संख्या बढ़ावे में कछु रखो ना है, केवल गुणवत्ता बढ़ावे में रखो है। तो आज हम जब जनसंख्या दिवस को एक जाई विषय पे बात कर रहे हैं कि हमें अपनी गुणवत्ता बढ़ानी है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है, संसाधन की गुणवत्ता बढ़ानी है, अच्छी आदतन की, अच्छे गुणन की, अपनी खेती में अच्छी तरह से आगे बढ़वे की। हमें अपनी मट्टी, खेती, इन सब से तो जुड़े ही रहना है भैया, इनसे तो हमारा जीवन है। तो हमें सदैव अच्छी बातन को, क्योंकि हमारे ग्रह पे कायर है, हमारे जन नीले ग्रह पे कितनी साफ सफाई है, कितना सुंदर है, कितने पेड़ है, इन सब चीज़न की गुणवत्ता बढ़ाए के हमें प्रसन्न रह के आगे बढ़ना है। और बहनों, प्रसन्नता की बात करें तो बरसात रानी को आगमन है वो है जी। बरखा रानी जब आमें तो सुंदरता लेके आमें, हरियाली लेके आमें। लेकिन बहनों देखो, हमारे तुम्हारे काजन से, क्योंकि हम तुम कऊ को घर बनना है समाज के बहनों, तो कोई सड़क पर वाहन नहीं कर रहे हैं तो गड्ढे खुद रहे हैं, तो कऊ तरीके से हम तो गड्ढे हैं जाएं। कबू कबू हम कारण अकारण बस अपनी नाले

मैं सामान को भाई दे मैं जो प्लास्टिक के थैली थैलियन को तो नाली भर जा मैं तो है ना हमें ऐसा नाय करना है क्योंकि गड्ढे में पानी भरवे से मच्छर मक्खन का प्रकोप बढ़ सके बीमार रह सके। और देखो बालकन को तो केवल मौज और मस्ती भावे तो बरसाए देख के वो नहाए भी भागे तो ऐसा नहाए नहीं तो बीमार रह जाएंगे। तो बहनों हमें अच्छे कामन को

और जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु पनप जावे तो नेक धूप निकले तो अपने कपड़न को धूप दिखावें, घर को साफ सुथरा साफ रखें, नालिन की सफाई रखें, फिनाइल विनाइल डाल के नेक साफ रखेंगे तो हमें उन पर प्रसन्नता होगी। और देखो हम बड़े बूढ़े ने तो सुनते आए हैं काऊ को घर साफ हो ना तो खूब की में कि बाकी घर इतना साफ है कि मक्खी रिपट रही है। तो देखो कहावत ऐसे ही थोड़ी ना बनाई है, मक्खी मच्छर अपने आप रिपट के भाग जाएंगे जब हम साफ सफाई को रखेंगे। एक और विशेष बात, भोजन को विशेष ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। बरसात में चटपटो तलो मसालेदार भोजन करने को बहुत मन करे कि पकौड़ा बना लियो, लाओ मिर्च के ही बना लियो, और कछु ना है तो अरे आलू के बना लियो, ब्रेड के बना लियो, खूब मन चले। पर भेनाओ देखो इन कचौड़ी से पकौड़ी से आज के वातावरण देखते भाई थोड़ा हमें पाचन को ध्यान रखना है, और जब पाचन दुरुस्त रहेगा तो काम करने में मन लगेगा, और मन प्रसन्न तो सब प्रसन्न। और भेनाओ भोजन में फल साग सब्जी सलाद इन सबन को बड़ो ही महत्व है, बड़े भाव है। और जा समय हवाली में अब जो आकाशवाणी आ रही ना बहनाओ तो ढकील पे कार्यकारी जामुन बिक रहे बड़ी सुंदर, और मुँह में पानी आ जाए, और वो बेच भी बारो बड़े वासे बेच रहो काली है भौराली है जामुन, तो ऐसा लग रहा अब पहले उतर के जामुन ले चलूँ, मन ना मानो ले उ लें। पर भेनाओ जामुन की बात काय कर रही हूँ तो तुम्हें सुन लियो एक जामुन को गीत सुने भेनाओ। तो जा समय बरसात को मौसम है जामुन को फल सामने होए और एक सुंदर सा लोकगीत मिल जाए तो भेनाओ आनंद आएगा ना, तो सुनो।

0: वर्खा की आई बहार रे, पिया मोहे जामुन खवाए दे। अब भाई हमारी बहना शालिनी शर्मा बहन के स्वर में सुन रही हती जब मीठे से लोकगीत को। और आशा है बहुत सारी बहन तो अगर जा समय घर में जामुन रखी होंगी ना तो निकार उलाई होंगी, और बिन के मोह के जो हाव हाव है वो मोहे जा समय यहाँ से ही समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ऋतु अनुसार फल बहुत ही स्वादिष्ट लगे हैं बहनों। चाहे वो कोई फल क्यों ना होए, जा समय आम के फल प्रचुर मात्रा में बालकन को बूढ़न को बच्चन को इतने भाव में कि यूँ लगे कि आम कोई सब काम कर लें। और देखो बहनों, जब हम फल खाए ना बा समय हम वृक्षन को याद करें कि ये वृक्ष कितने परोपकारी हैं कि फलन ने हमें दे दे मैं अपने ऊपर वजन लाद के, तो हमें बा समय लगे कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादा हमारे बुजुर्ग इन फल के वृक्षन को लगा के चले गए और आज हम छायाऊँ ले रहे हैं और फलू ले रहे हैं। और बहुत सारे वृक्षों को तो पता ही ना है वो कौन लगा के गए है तब वो हमें छाया दे रहे हैं, तो हमारा बहुत भीतर से मन करे। और बहनों अच्छी बातन को जब मन करे ना बिना अवश्य तभी पूरा कर देना चाहिए। तो आओ जा समय बरखा की ऋतु आई गई है तो वृक्ष लगावें, हरियाली बढ़ावें। क्यों? क्योंकि हमें छाया मिलेगी क्योंकि हमारे बुजुर्ग लगाए के गए हैं, पर हमारे बालकन को छाया मिलेगी जब वो सड़क पे धूप में से तपती धूप में से आएंगे ना, तो वो पास समय याद करेंगे कि जे हमारे बड़े बूढ़े ने पेड़ लगाया। तो बहनाओ थोड़े पामन को सकोड़े और वृक्ष लगावे। पामन को सकोड़वे का मतलब है आज हम अपने जमीन को ऐसा प्रयोग कर रहे हैं कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए चाहे पेड़ होए या ना होए। पर बहनाओं देखो जब आता है सोचें कि हमें वृक्षन से कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्योंकि घर जरूरी है पर ऑक्सीजन जीवे के ताई सांस लेवे के ताई बहुत जरूरी है, तो वृक्षन को अवश्य ही रोपण करें और सींचें बहनाओं ने। क्यों? क्योंकि सींचेंगे ना तो बड़े कैसे होंगे। और देखो जनसंख्या बढ़ रही है तो घर मकान सब चाहिए ही चाहिए बहनाओं। जो बात सच्ची है तो बुद्धिमता से अपने संसाधनन को प्रयोग करें, नहीं तो वो सीमित हैं खत्म ना है जाएं। और जब बढ़ती हुई जनसंख्या के का दुष्परिणाम है सकें, तो बहनाओं आओ जा बात को हम जाने मोहिनी तोमर बहन से। तो बहनाओं सुनो,
1: आज मैं जिस विषय पर आपके सामने अपने विचार रखने आई हूँ

केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि आने वाले भारत का भविष्य तय करने वाला विषय है। विषय है बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके दुष्परिणाम। राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनसंख्या कब समस्या बनती है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। यदि नागरिक शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारी और कुशल हों तो जनसंख्या शक्ति बनती है। लेकिन जब जनसंख्या संसाधनों, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था से अधिक तेजी से बढ़ती है, तो वही जनसंख्या चुनौती बन जाती है। जनसंख्या कब समस्या बनती है, अब ये जानिए। अक्सर लोग कहते हैं कि अधिक लोग होंगे तो देश शक्तिशाली होगा। यह बात तभी सही है जब उन लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अवसर मिले। यदि घर में 5 लोगों का भोजन हो और वहां 15 लोग बैठ जाएं, तो किसी का पेट भरेगा? नहीं भर पाएगा। यही स्थिति देश की भी होती है। पहला दुष्परिणाम है बेरोजगारी। आज लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, निजी क्षेत्र में भी अवसर सीमित है। जब नौकरी नहीं मिलती तो युवाओं का आत्मविश्वास टूटता है। कुछ लोग गलत रास्ते की ओर भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को बढ़ाती है। दूसरा दुष्परिणाम है गरीबी। जब परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और आय सीमित होती है, तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, फिर भोजन की गुणवत्ता गिरती है, उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर पूरा परिवार गरीबी के चक्र में फंस जाता है। तीसरा दुष्परिणाम है शिक्षा की गिरती गुणवत्ता। आज कहीं सरकारी विद्यालयों में एक कक्षा में बहुत अधिक बच्चे होते हैं और अधिक बच्चे होने के कारण उन्हें शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती, उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो एक शिक्षक सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है। ऐसी स्थिति में हर बच्चे पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। चौथा दुष्परिणाम है स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव। अस्पतालों में लंबी लाइनें लगती हैं, डॉक्टर कम पड़ जाते हैं, सरकारी अस्पतालों पर बहुत अधिक बोझ बढ़ जाता है, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसीलिए जनसंख्या बढ़ जाने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। पांचवा दुष्परिणाम पानी का संकट। आज कई शहरों और गांवों में पीने का पानी बड़ी समस्या बन चुका है। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। यदि जनसंख्या बढ़ती रही और पानी का संरक्षण नहीं हुआ, तो आने वाले समय में पानी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। छठा दुष्परिणाम खेती की भूमि कम होना। आप लोग ध्यान से सुनिए, हर वर्ष नई कॉलोनियां बन रही हैं, खेती की जमीन मकानों में बदल रही है। जमीन कम होगी तो अन्य उत्पादन भी कम होगा और अन्न जब कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए सातवां दुष्परिणाम है महंगाई। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और आपूर्ति सीमित रहती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि भोजन, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक चीजें महंगी होती जाती हैं। आठवां दुष्परिणाम पर्यावरण प्रदूषण। अधिक जनसंख्या के कारण अधिक वाहन हो,
अधिक वाहन बढ़ जाते

0: हैं, अधिक ईंधन की खपत, अधिक कचरा, अधिक प्लास्टिक, अधिक प्रदूषण। यदि प्रकृति बीमार होगी तो मनुष्य भी स्वस्थ नहीं रह सकता। नौवां दुष्परिणाम, जंगलों की कटाई। रहने के लिए घर चाहिए, उद्योग चाहिए, सड़कें चाहिए, इन सब के लिए जंगल कटते हैं, लेकिन जंगल ही वर्षा करते हैं, जंगल ही स्वच्छ हवा देते हैं और जंगल ही जैव विविधता का आधार है। दसवां दुष्परिणाम, अपराध। जब बेरोजगारी, गरीबी और निराशा बढ़ती है तो समाज में अपराध बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था पर भी दबाव आता है। ग्यारहवां दुष्परिणाम, यातायात की समस्या। हर शहर में जाम की समस्या बढ़ रही है, घंटों समय बर्बाद होता है, ईंधन की खपत बढ़ती है, प्रदूषण भी बढ़ता है। बारहवां दुष्परिणाम, परिवार में तनाव। यदि परिवार की आय सीमित हो और जिम्मेदारियां बहुत अधिक हों, जनसंख्या अधिक हो, तो तनाव बढ़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पालन पोषण पर पर्याप्त ध्यान देना कठिन हो जाता है। इसलिए आप लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझिए, सनातन धर्म हमें संयम, संतुलन और उत्तरदायित्व का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कर्तव्य का महत्व तो बताया है। सच्चा धर्म वही है जिसमें परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों का हित हो। बच्चों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें अच्छे संस्कार, शिक्षा और स्वस्थ जीवन मिले। इसका समाधान ये है, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता, संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जिम्मेदार और संतुलित परिवार की भावना, समाज में जागरूकता का अभियान। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर प्रभावशाली बनना है और यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुखी, शिक्षित और सुरक्षित हो, तो हमें आज से ही जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। आइए हम यह संकल्प लें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चा शिक्षित हो, हर परिवार स्वस्थ हो, हर नागरिक जिम्मेदार हो और प्रकृति सुरक्षित रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जनसंख्या तभी वरदान है जब वह शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारी और आत्मनिर्भर हो। केवल संख्या बढ़ाने से राष्ट्र महान नहीं बनता, महान बनता है उसके नागरिकों के चरित्र, ज्ञान और कर्तव्य पालन से। भारत माता की जय। सभी भारतवासियों को राधे राधे।
1: अभय, हमारी बहन मोहिनी तोमर से इतनी अच्छी बात सुन रही हती, इतनी अच्छी जानकारी ले रही हती, बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम। तो बहनाओं, जब बात को हम सबई जाने और माने हुए, तो क्यों ना हम एक दूसरे को समझाएं, अपने आप को समझाएं और इन बातन पे ध्यान दें मैं, और अपने देश को, और अपने देश को ही ना, सकल विश्व को सुंदर, इतना सुंदर और अच्छा बना मैं कि मैं ना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। तो सबरो देश सुखी रहे, कहूँ बीमारी ना होए और सब तरफ आनंद ही आनंद होए। तो ऐसे ही अपना देश बना मैं जाके काजे, जो हमारी पहल होए बाय करें। अगर हमारी पहल शिक्षा है।

तो सबसे पहले शिक्षा उठावें, अपने परिवार में सभी को शिक्षित करें, क्योंकि हम जब खुद खड़े होंगे तभी देश सुंदर और शिक्षित बनेगा। संघ में अगर हम शिक्षित हैं गए तो और सबन को शिक्षित करें और अपना योगदान दें। बहनों अच्छी बातन को फैलाए वैसे प्रसन्नता बढ़े, और अगर ना फैलाना चाहें तो बुरी बातन से दूर रहें जो अच्छा है, क्योंकि उदासीन है वो बढ़िया है, पर अपने हाथन से कऊ को कष्ट नहीं पहुँचाएँ, क्योंकि मनुष्य ने हम क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास एक मस्तिष्क है और ईश्वर ने हमें दो हाथ दे के भेजो है, तो दयावान रहें, एक दूसरे की मदद करें। और बहनों मदद करते करते अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, क्योंकि हम अगर स्वस्थ होंगे तो अच्छी अच्छी गतिविधियों में भाग ले सकें। और बहनों मन को शांत और सुंदर बनाए कर रखें, और सुने जे बहुत सुंदर सा लोकगीत।

अभी हमारी बहना ऋषि शर्मा भैया के स्वर में जब बहुत सुंदर से लोकगीत को आनंद ले रही थी, ये छलिया नंद किशोर। तो बहनाओं अब समय है गया है आपसे राम राम करवे को, तो फिर मिलेंगे बहनाओं।

0: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर अंगना, प्रस्तुत कर रही थी विजयलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत तमिल भाषा पाठ। गीतकार हैं पेरिया स्वामी थुरान।
1: नमस्ते बच्चों, आज मैं पेरिया स्वामी थुरान का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत सिखाऊंगी। पहले आप गीत लिख लें।
2: देश सेवई सेयवे, சேர்ந்தெழுந்து நின்றுளோம், ஆசை எங்கள் வாழ்விலே, அன்னை அன்பு சேவையே,
1: லிக்லியா? एक बार मैं शुरू से पढ़ूंगी, ठीक कर लीजिए।
2: தேச சேவை செய்யவே சேர்ந்தெழுந்து நின்றுளோம், ஆசை எங்கள் வாழ்விலே, அன்னை அன்பு சேவையே।
1: अब हम दूसरे अंतरे पर चलते हैं। लिख लिया? अच्छा, अब आगे लिखिए।
2: அரிய செயல்கள் யாவையும், ஆர்வம் கொண்டு செய்குவோம், அரிய செயல்கள் யாவையும் ஆர்வம் கொண்டு செய்குவோம், பெருமை என்றும் ஓங்கவே, பெரிய எண்ணம் கொள்ளுவோம், பெருமை என்றும் ஓங்கவே, பெரிய எண்ணம் கொள்ளுவோம்.
1: அப்ப ஆகிய லிக்கியே,
2: ஜாதி பேத சிறுமைகள்,
3: ஜாதி பேத சிறுமைகள்
2: சமயவாத பிரிவுகள், ஏதும் இந்த நாட்டிலே இல்லை என்று போக்குவோம்,
1: दोबारा पढ़ती हूँ, देख लीजिए।
2: जाति भेद चिरुमैगै समयवाद पिरिवुगै एदुम इंद नाट्टिले इल्ले एंड्रु पोक्कुवोम।
1: अब आगे लिखिए।
3: मांदर ओन्रु कूडिये
2: वाल्विल इन्बं एदवे,
3: शांति एंड्रुम।

0: अब आप गाइए।
1: 1, 2, 3, 4।
0: समझ गए? अच्छा, अब हम ताल के साथ गाने के बाद स्थाई गाएंगे।
1: 1, 2, 3, 4।

0: समझ गए, अब आप गाइए जरा जोश से, देश सेवा के भाव के साथ गाइए।
1: रेडी 1 2 3 4।

0: बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक गाया आपने। बड़े होकर आप भी इसी तरह देश सेवा करना और अपने देश का नाम रोशन करना। नमस्ते बच्चों।
1: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक शिक्षा गान पाठ के अंतर्गत तमिल भाषा पाठ। गीतकार थे पेरिया स्वामी थुरान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: peace by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi forces flight cancellations and school closures in Japan and Taiwan. India to face England in fifth and final T20 international in Southampton, England this evening. And in FIFA World Cup, Norway to take on England in Argentina to face Switzerland in quarterfinals tonight. For details of the stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
3: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने

0: यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना

0: चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय

0: समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

साहिर लुधियानवी के लिए के इस गीत को संगीत दिया था एन दत्ता ने। स्वर आशा भोसले और महेंद्र कपूर के थे। फिल्म का नाम था धूल का फूल। और आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र के स्वर में फिल्म दिल आखिर दिल है का ये गीत। बोल लिखे हैं नक्श लायलपुरी ने, संगीत खयाम साहब का है।

मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दिल ने पुकारा। बोल लिखे थे इंदिवर ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म छलिया से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना कमर जलालाबादी की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए फिल्म छोटी सी मुलाकात के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। इस मीटर पर हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं को, सभी बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का, और हमारी तरफ से नमस्कार। और हर रोज़ की तरह हम आज आपसे बात करेंगे

दोस्तों, आज की बात का क्रम में आज आप सुनेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि आज है विश्व जनसंख्या दिवस। तो हर वर्ष 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों जैसी जनसंख्या संबंधी चुनौतियों के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है।

इसकी शुरुआत दोस्तों 11 जुलाई को 5 बिलियन डे पर हुई थी, क्योंकि इसी दिन वैश्विक जनसंख्या लगभग 5 अरब तक पहुंच गई थी। इस भारी वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने इसको औपचारिक रूप से इस दिवस को मनाने की स्थापना करी थी। तेजी से बढ़ती आबादी केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव डालती है। इस दिवस का महत्व कुछ बिंदुओं को अगर हम समझते हैं तो बहुत आसानी से समझा जाता है, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर जोर देना, लोगों के छोटे जो परिवार हैं, परिवार नियोजन के फायदों के प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ाना है,

छोटा परिवार खुशियों का आधार, यही है जीवन का सुंदर उपहार। जिम्मेदारी से ले हर निर्णय आज, तभी बनेगा देश का सुनहरा समाज। साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस हमें ये संदेश देता है कि केवल जनसंख्या बढ़ना ही विकास का संकेत नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिले, यही वास्तविक विकास है। यदि जनसंख्या वृद्धि संतुलित होगी तो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम जिम्मेदार नागरिक बने, परिवार नियोजन के प्रति जागरूक रहें, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें तथा संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करें। संतुलित जनसंख्या ही स्वस्थ, समृद्ध और विकसित समाज की मजबूत नींव है। तो आओ मिलकर शपथ लें, जागरूकता का दीपक जलाएं, विश्व जनसंख्या दिवस पर हम संतुलित भविष्य का संदेश फैलाएं।

और आज हम आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाते हैं। विषय है विश्व जनसंख्या दिवस। वाचन है देवराज कृष्ण दीक्षित और प्रिया उपमन्यु का। प्रस्तुति है डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत की।

विराट ब्रह्मांड, अकल्पनीय गतिमान व्यवस्था, समय, चाल और चेतना से अभिभूत एक अनुशासित प्रकृति का परिवर्तन चक्र, जिसके केंद्र में स्थित मानव कर्म, ज्ञान और योग की चेतना को संजोए प्रकृति चक्र का एक ऐसा माध्यम जिसने प्राकृतिक संरचना से परे भौतिक संसार की रचना में अपना सर्वस्व लगा दिया।

परिणामतः मानव कालांतर में भौतिकवादी अस्थिर अस्थाई को ही आसक्तिमय भाव से स्थाई समझने की भूल कर बैठा और उसने प्राकृतिक संसाधनों का न केवल दोहन किया बल्कि प्रकृति के नियमों में भी हस्तक्षेप की असफल चेष्टा की। इसका फल मानव को प्राकृतिक प्रकोपों, भुखमरी, अस्थिर मौसम, असंतुलित होते पर्यावरण के रूप में मिलने लगा। भूमि पर रसायनों के अत्यधिक प्रयोग ने खाद्य श्रृंखला और हरितिमा को गंभीर हानि पहुंचाई।

0: विश्व के आगे अनेकों चुनौतियां और समस्याएं हैं, जिनमें से प्रमुख है आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या। धरती पर सब कुछ सीमित है, जल, जमीन, ईंधन, सब कुछ सीमित होते हुए भी इनकी मात्रा इतनी प्रचुर है कि जीव जंतु सैकड़ों साल से इस धरती पर आराम से अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन हालात बदल चुके हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी पूर्ति के लिए इन संसाधनों का दोहन ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है जिसकी भरपाई संभव नहीं है।
1: जनसंख्या के इस दबाव को आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि सन 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल वर्ष 1987 में दुनिया की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। इस आंकड़े को उस वक्त एक चेतावनी के रूप में लिया गया था। बढ़ती हुई जनसंख्या और सरकारी प्रयासों के बारे में बता रहे हैं सरोज कुमार।
2: हकीकत यह है कि रीसेंट एस्टीमेट्स ये बता रहे हैं कि इंडिया चाइना को क्रॉस करके नंबर वन हो जाएगी। इवन कुछ एस्टीमेट ऐसे हैं जो उसको और नीचे ला करके 2024 कर चुके। लेकिन सबसे इंकरेजिंग बात यह है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हमारा प्रोग्राम काफी बढ़िया काम कर रहा है। हमारी केवल प्रॉब्लम है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जो सक्सेस रेट है, हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, वो उस नजरिए पे नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से प्लान किया गया।
0: विश्व जनसंख्या दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। ये आयोजन वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा स्थापित किया गया था। क्या ये दिवस हमारे लिए स्मरण संदेश है? बता रहे हैं मनमोहन शर्मा।

0: विश्व जनसंख्या दिवस हम हर साल मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। ये स्लोगन अगर आपको पता है, ये 1987 में यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी UNFPA ने इसको शुरू किया था। एंड द रीजन वॉज दैट वेरी डे ऑन द 11th ऑफ जुलाई द वर्ल्ड अटेन्ड द पॉपुलेशन ऑफ 5 बिलियन। फ्रॉम दैट डे देयर वाज एन अवेकनिंग इन द वर्ल्ड कि भाई अभी तो हमको कुछ करना चाहिए। एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स कीपिंग दिस नंबर इन कंट्रोल, ताकि आगे जाके हमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लैंड इज लिमिटेड एंड ऑल द साधन्स, ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग इज लिमिटेड। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड पॉपुलेशन।
1: देश में उत्पादित भोज्य पदार्थों या उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अधिक तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक वृद्धि दर और सामाजिक संतुलन दोनों को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करती है।
2: वस्तुतः स्वास्थ्य संबंधी प्रगति दर के कारण घटती मृत्यु दर और स्थायी जन्म दर इस विसंगति के मूल में स्थित है। यद्यपि मानव संसाधन किसी भी देश की प्रगति के लिए आवश्यक हैं, तथापि इसमें कमी या वृद्धि से उस देश का विकास प्रभावित हो जाता है। इसलिए एक आदर्श स्थिति के निर्माण हेतु इसमें संतुलन आवश्यक है। जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण रोजगार, आवास और पर्यावरण की समस्याओं के साथ साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार ये समूची मानवता विनाश के कगार पर पहुंच सकती है। बताते हुए पूनम मुटरेजा।
3: ये सोच के पॉपुलेशन डे मनाना चाहिए कि इस दिन हम प्रण लें कि हम आगे और अपना फैमिली प्लानिंग मजबूत कैसे करेंगे प्रोग्राम। दूसरा, हम अच्छी तरह से एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कहें, आप रिव्यू कहें, कि हमारी नीतियां कैसी रहीं, हमारी जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, गरीब महिलाएं, दलित महिलाएं, पिछड़े इलाकों में जो रहती हैं, जहां हेल्थ सर्विसेज बहुत ही कम हैं, तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी जाहिर है कम होंगी, इन पे हम कैसे और जोर दे सकते हैं।
1: जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है एवं जन घनत्व के मामले में भी भारत काफी ऊपर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि एवं अन्य संसाधनों पर काफी दबाव महसूस किया जाता रहा है। किसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में मुख्यतः तीन कारक प्रमुख होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर तथा आवास प्रवास।
2: जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, पर्यावरण का अवनयन, आवासों की कमी, निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या काफी अधिक है। ये गरीबी और अभाव अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व तस्करी जैसी समस्याओं को जन्म देती है।
1: पर्यावरण की दृष्टि से भी जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है। बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसके परिणाम विनाशकारी सिद्ध हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण के लिए भी दोषी माना जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट और परिवार को सीमित रखने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
4: हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं

0: उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा,
1: उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा,
0: उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए
1: मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है।

0: नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा। अनाजों और खाद्यान्नों का अधिक से अधिक उत्पादन करना होगा। लोगों को रहने के लिए घर देना होगा। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी और सड़क परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर काम करना होगा।
1: नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके समायोजित करने के लिए भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे।
0: बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए भारत को मानव पूंजी का मजबूत आधार बनाना होगा ताकि वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। लेकिन भारत की कम साक्षरता दर इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
1: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या को विकास की सीढ़ी नहीं बना पाया है। इसीलिए भारत को अभी जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ खाद्यान्न की सुनिश्चितता, कृषि को लाभकारी बनाना एवं कीमतों पर नियंत्रण जैसे उपाय करने की आवश्यकता है। वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सतत विकास लक्ष्य जैसी योजनाएं निश्चित रूप से देश की सामाजिक आधारिक संरचना को बढ़ाने में सहायता करेंगी।
0: जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। जनसंख्या समस्या समाधान का श्रेष्ठतम तरीका है कि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के प्रसार और गुणवत्ता में तेजी लाई जाए।
1: जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दृष्टिकोण से भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु अलग अलग कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन सब प्रयासों से जन संसाधन के गुणात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक परिवर्तन की दिशा सुनिश्चित

0: आइए विकास के इन सोपानों पर कदम बढ़ाने से पहले संकल्प लें छोटे परिवार का, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का, साथ ही कुशल मातृत्व का।
1: परिवार की जिम्मेदारियां उठाएं और राष्ट्र को सक्षम बनाएं।

0: साथियों, अभी आपने सुना विशेष कार्यक्रम विश्व जनसंख्या दिवस। वाचन था देवराज कृष्ण दीक्षित और प्रिया उपमन्यु का। कार्यक्रम जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: साथियों, अब बात करेंगे हम साहित्यकार भीष्म साहनी पुण्यतिथि के बारे में, क्योंकि उनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। 11 जुलाई प्रगतिशील और प्रतिबद्ध रचनाकार भीष्म साहनी की पुण्यतिथि का दिवस है। इस मौके पर उन्हें याद करना एक शानदार और पायदार परंपरा को याद करना है। वे एक अच्छे रचनाकार के अलावा कुशल संगठनकर्ता भी थे। प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव के तौर पर उन्होंने देश भर में इस संगठन की विचारधारा फैलाने का महती कार्य किया। भीष्म साहनी की रचनाशीलता मुख्तसर नहीं बल्कि इसका दायरा काफी विस्तृत है। उपन्यास, कहानियां, नाटक, आत्मकथा, लेख और कला की तमाम दीगर विधाओं में उन्होंने अपनी कलम निरंतर चलाई।

उनका निधन 11 जुलाई 2003 को हुआ। इस दिन उन्हें उनकी साहित्यिक विरासत, मानवीय मूल्यों और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ। वे सरल भाषा में गहरे सामाजिक और मानवीय विषयों को प्रस्तुत करने वाले लेखक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तमस है, जिसमें भारत विभाजन की और सांप्रदायिक हिंसा का एक अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

साथियों, उनकी रचनाएं हमें मानवता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। उनकी पुण्यतिथि केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं, बल्कि उनके विचारों और साहित्य से प्रेरणा लेने का भी दिन है। शब्दों से जिसने सच का आईना दिखाया, मानवता का संदेश हर दिल तक पहुंचाया, भीष्म साहनी का साहित्य सदा अमर रहेगा, उनका उज्ज्वल व्यक्तित्व युगों युगों तक याद किया जाएगा।

साथियों, इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बेहद ख्याल रखें, और हाँ, हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों

0: एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती, और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अनुप्रसारित करेंगे दिल्ली केंद्र से।

प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती के लाभ और बरसात के मौसम में होने वाले कृषि कार्य। इसी कार्यक्रम में आप एक वार्ता भी सुन सकते हैं। विषय होगा बढ़ती जनसंख्या और रोजगार सृजन हेतु खाद्य प्रशिक्षण का योगदान। वार्ताकार होंगे विशन सिंह।

कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक का समय रहेगा शाम 7:05। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रज यात्रा का प्रसंग। कथाकार होंगे धर्मवीर अज्ञानी।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मैंने प्यार किया फिल्म के कुछ गीत। समय याद रखिएगा 8:30।

कुछ देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात 8:20 पर और अब से कुछ ही पलों में यानी 6:10 पर।

ये था आज का कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
4: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है।
3: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
4: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया देखो, आजकल कैसो मौसम है रो जे, तो आप जान ही रहे हो, कभी तो कड़क धूप पड़न लगे, एकदम उमस सी बन जाए और भैया भभका लगे, वो कबू झमाझम बारिश सह जाए। खेती क्यारी में आजकल आप जान रहे हो कि खरीफ की जो मुख्य फसल है हमारी धान की, बाकी रुपाई चल रही है। कचु भैया के जो अभी मान लो मूँग ठाड़ी है, भाई मूँग कटवा रहे हैं। जिनकी बाजरा की खेती है वो अपने बाजरा में भैया पानी को या फिर खाद को इंतजाम कर रहे हैं। बात करें आज भैया प्राकृतिक खेती की, तो देखो प्राकृतिक खेती को मतलब है जो प्रकृति के संग रह के हम खेती करें। बामे जिन आए कि हम अंधाधुंध जो आधुनिक जो हमारे संसाधन चल गए उनको प्रयोग करके प्रकृति ते हम छेड़छाड़ करें। जैसे कि मान लियो आप जानो पहले बैलन ते खेती होकर ही खेत जुतते, एक के कूड़ जुतो ऐसा बढ़िया खेत बन जातो, बामे इतनी अपट पैदावार होती। पर चलो हम जो कहें कि अब ये युग है तो ये मशीन को युग है, ठीक है मशीन ते हम खेती कर रहे हैं, लेकिन या को मतलब जिनाएं कि भैया हम दवाई को इतनो प्रयोग करें कि वो हमें हमारे भोजन में उन जहर को असर आ जाए, या यूँ समझ लो कि हम हर फसलें हाथ ते न कटवाए के भाई मशीन ते कटवा में कितना नुकसान हो। देखो आजकल मूंग कटी है, आप सब देख रहे हो, तो मूंग इतनी जमीन में गिरते हैं कि वो जुताई के संग 5-6 दिन पीछे जो कि त्यों उपजावे। तो जी दोहन है रो एक तरह से, पहले क्या करे करे भैया अपने घर घर की मिलके और मूंग को चोट लावे और घर लाके डाल दे, कोई नुकसान ना हो तो, और देखो हमारा खेतू बढ़िया बने हो रे और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया बने हो रे। ऐसे ही बात करें जैविक खेती की, तो देखो जी उर्वरकन को प्रयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं, जाए रोक के हम वही पुराने जमाने के गोबर के खाते पे आ जाएं। क्योंकि देखो गाय भैंस सब के आते हैं और ना तो भैया हमें रखनी चाहिए, क्योंकि खेती क्यारी और पशुपालन जी एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। तो भैया जो ना कहें कि आमों के आम और गुठरीने के दाम, तो देखो पीवे को तो दूध मिल जाए और संग ही हमें खेत काज गोबर की खाद मिल जाए, तो चोन भैया हम फिर वही बात पे आमें, तो हम गोबर की सड़ी खाद या जैविक खाद बनाए के अपनी खेती में डालेंगे तो उर्वरकता बाकी बढ़ेगी और पैदावार बढ़ेगी। भाई पहले वो बीज ना आए जो आजकल बीज हैं हमारे फसल न की, आजकल के बीजन में पहले की अपेक्षा कम से कम ज़्यादा ना आए तो भैया तिगनी चौगुनी पैदा तो है ही रही है। अब तुम धान नहीं देख लो, धान के ऐसी ऐसी जोर के बीज आ गए जो कि अब पैदावार है पहले तो दुगनी चौगुनी ज़्यादा पैदा दे रहे हैं। तो भैया हम प्राकृतिक खेती करें, जैविक खेती करें, जाते कि हमारी फसल बढ़िया होए, जमीन बढ़िया होए, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होए और भैया अंधाधुंध जो हमारे दामन की हानि है रही है, दाम हम अत के पैसा फूंक रहे हैं, जीव रुक जाए, तो चौन हम भैया पहली सी बातन पे आ जाएं, जाते सभी हमारे लाभ होए। तो ये बात करी कछु हमने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की। अब देखो कार्यक्रम में भैया थोड़ा सा मनोरंजन है जाना।

0: इनसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह। सुनो भैया,
1: किसान भाइयों, किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण है और ये खाना हमें समय समय पर मिलता रहे, संतुलित मात्रा में मिले, अच्छा मिले, इसके लिए ज़रूरत है कि वर्ष पर्यंत चीज़ें हमारे पास हों। फसल उत्पादन एक नियत समय पे होता है, फसल आती है, खूब उत्पादन होता है, फसल चली जाती है, लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत हमें पूरी साल बनी रहती है। एक समय ऐसा था कि हम जो फसल होती थी उसी तरह के खाद्यान्न की आपूर्ति हमारे स्वभाव में थी। जब रबी की फसल आती थी तो हम गेहूँ जो चना जो है भरपूर मात्रा में मिलता था तो वो खाते थे, फिर ज्वार बाजरा मिलता था तो वो खाते थे। लेकिन आज चीज़ें बदल गई हैं, सुविधाएं बदल गई हैं, तकनीकी विकास हो गया है, तो फसल पे हम चीज़ों का प्रसंस्करण कर लेते हैं। टमाटर होता है तो आज देखते हैं हम उसका सॉस, चटनी, प्यूरी हम पूरे वर्ष पर्यंत खाते हैं। हरी मिर्च हमको पूरी साल मिलती है, हरा धनिया हमको पूरी साल मिलता है, पहले नहीं था संभव, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। किसान भी जागरूक हो गया है, किसान उत्पादक हो गया है, लेकिन जब फसल आती है और उत्पादन ज़्यादा होता है तो उसका प्रसंस्करण हम कर लें तो किसान को उन चीज़ों का लाभ भी मिल जाएगा और वो उत्पादक चीज़ वर्ष पर्यंत हमें संरक्षित तौर पे मिलती रहेगी। इससे किसान की आय भी बढ़ती है, देश के संसाधन बढ़ते हैं और व्यक्ति को जो मांग है वो उसकी उपलब्धता भी बढ़ती रहती है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? एक किसान जागरूक तो है लेकिन और कितना जानकार होना चाहिए, चीज़ें कितनी आवश्यक हैं, हमको कितना जागरूक होना है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ श्री विशन सिंह जी हैं, आप विशेषज्ञ के तौर पर खाद्य प्रसंस्करण जो हमारा उद्यान विभाग का एक अनुभाग है जवाहर बाग में, वहाँ सेवानिवृत्त रहे, अभी अपना जीवन यापन कर रहे, लेकिन अनुभव उनके पास बहुत है। तो विशन सिंह जी, आज हमारी इस चौपाल में आपका स्वागत। राम राम।
2: राम राम जी।
1: जी तो बताइए कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ अपने किसान भैयाओं से, ये आपको ठीक लग रही है? इसकी आवश्यकता है जब हम जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें खाना उसी मात्रा में उपलब्ध कराना है, तो जनसंख्या से जोड़ करके इसको बताइए कि आज देश को और समाज को इसकी कितनी आवश्यकता है।
2: जी देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर सीजन के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं और देखा गया है कि इन फसलों का हमारे किसान भाई तकनीकी दृष्टिकोण से, कृषि विज्ञान केंद्र से, तमाम वैज्ञानिकों के सुझाव के आधार पर अपने किसानों ने उत्पादन को बढ़ा दिया है और उत्पादन को इतना बढ़ा दिया है कि हमारा देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर निर्भर है, दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आज देश के जो कृषि भूभाग है जिसमें हम खेती करते थे, उस खेती की जमीन को नेशनल हाईवे, रेलवे, तमाम अंचल में औद्योगिकरण के कारण, तो जमीन का जो उपयोग किया गया है सरकार द्वारा, उसमें जमीन की गुणवत्ता तो खत्म हुई हुई है, साथ ही साथ उत्पादन भी कम हो गया है। फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के बहुत अधिक प्रयोग से हमारी जमीन की गुणवत्ता और उर्वरक खत्म हो गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों की तकनीक के आधार पर और खाद्य प्रसंस्करण का सहारा लेके इस ज्वलंत समस्या को किसानों के द्वारा संभवतः उसको दूर किया जा सकता है।
1: आप ये कह रहे हैं कि जो जनसंख्या जितनी है देश की और बढ़ रही है, उसमें खेती का भूभाग कम होता जा रहा है, उत्पादकता कम होती जा रही है, तो एक खाद्य प्रसंस्करण ही एक ऐसी चीज है जिससे चीज को उपयोगी बना करके हम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं।
2: जी
1: ये आप कहना चाह रहे हैं?
2: जी। टमाटर का केस ले लीजिए, मैंने पिछली बार आप लोगों के क्षेत्र में देखा कि किसानों ने बहुत बड़े पैमाने पर टमाटर किया और टमाटर की बहुत बढ़िया फसल हुई, लेकिन उसका भाव अचानक उत्पादन ज्यादा होने से गिर गया।
1: भाई उत्पादन तो एक समय पे ही होगा,

ओ उदो ब्रज वृंदावन में मेरो मन रह गयो। दामोदर शर्मा के स्वर में भैया अवैया लोकगीत को आनंद आप ले रहे। देखो भैया, जनसंख्या को मतलब जो है कि हम अपनी जो जनरेशन है वहाँ पे रोक न लगाए के भैया, और वो को संसाधन न अपनाए के और भैया वह बढ़ामते ही चले जाएं। तो जनसंख्या तो चलो बढ़ रही है, लेकिन बाकी संग संग रोजगार भैया हमें चाहिए, क्योंकि भाई भोजन हमें तभी मिलेगा जब हम कुछ काम करेंगे। तो ऐसी ही एक भेंट वार्ता आपको सुनवावें कि बढ़ती जनसंख्या और रोजगार सृजन हेतु हम खाद्य प्रशिक्षण लेके बाको योगदान अपने जीवन में कैसे ले सकें। तो यही विषय पर जानकारी दे रहे हैं बिशन सिंह।

0: समय पर उत्पादन होगा और ज्यादा उत्पादन होता है क्योंकि तकनीक हमारे पास बहुत अच्छी है, तो उस ज्यादा उत्पादन से क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन बढ़ता है तो वहां रेट कम हो जाता है,
1: मतलब किसान को उसका पैसा कम मिलता है,
0: ना के बराबर
1: ना कम। हाँ।
0: और अगर खाद्य प्रसंस्करण का इसमें प्रयोग कर लिया जाए तो सरकार द्वारा इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं, वहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था है, प्रशिक्षण देने से हम सब्जी का और फल का प्रसंस्करण करने की कला सीख जाते हैं।
1: जी जी जी।
0: और उस कला से क्या होता है कि मैंने टमाटर जो भाव गिर गया उस टमाटर को लिया और टमाटर को लेने के बाद उसका प्यूरी के रूप में संरक्षण कर लिया, ये सीधा साधा है, टमाटर को उबालिए और मशीन से छानिए और छानने के बाद उस जूस को गाढ़ा करिए और गाढ़ा करने के बाद वो बन जाती है प्यूरी। और प्यूरी क्या होती है, प्यूरी टमाटर का शुद्ध जूस होता है जिसको गाढ़ा कर दिया जाता है। इसकी आवश्यकता होटलों में, रेस्टोरेंटों में, घर पे, यहाँ वहां सब जगह होती है।
1: जब भी आपकी टमाटर की जरूरत पड़े, टमाटर आपको प्राकृतिक रूप में मिले ना मिले, प्यूरी अगर आपके पास है, फ्रिज में रखी है, आपके कोल्ड में रखी हुई है, तो वो जब समय पड़े ले लो।
0: सर
1: शादी ब्याह में उसमें
0: कोल्ड स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है।
1: हाँ,
0: इसको तो सूखे स्थान पर हम रखते हैं।
1: अच्छा।
0: और मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरे द्वारा अगर मैं टमाटर की प्यूरी बना दूं तो सूखे स्थान पर साल भर तक आराम से सुरक्षित रहती है।
1: अच्छा, अब इसमें जैसे आपने तो चूंकि विशेषज्ञ के तौर पर काम किया है, एक व्यक्ति को जब हम सिखाने जा रहे हैं तो चाहे टमाटर की प्यूरी बनाएं, चाहे जब आप आंवला आएगा तो उसकी कैंडी बनाएं, अचार बनाएं, मुरब्बा बनाएं, कितने दिन के प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें पड़ती है?
0: केवल 15 दिन का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। और 15 दिन में मैं उनको इतना ज्ञान दे दूंगा कि वो अपनी फसल का समुचित सुरक्षीकरण कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको प्रयोग भी बढ़िया तरह से कर सकते हैं।
1: तो ये सुविधा कितने पैसे में सरकार जिस जवाहरबाग में?
0: 20 रुपए का शुल्क है और जवाहरबाग में रजिस्ट्रेशन होता है, 15 दिन का हमारा एक क्लास होता है, उसमें हम ये सारी चीजें व्यवस्थाएं बताते हैं कि एक किसान के यहाँ जो पैदा होती है उस पैदा का अगर किसान का मूल्य न मिले बाजार में तो उसका संरक्षण करके उसके दुगुने तिगुने और चार गुने मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है।
1: मतलब 20 रुपए में आप एक व्यक्ति को ऐसा रोजगार सिखा सकते हैं कि जिससे वो अपनी आय भी बढ़ा सकता है, अपने संसाधन बढ़ा सकता है और अपनी जो अगर किसान है तो उपज का मूल्य भी बढ़ा सकता है।
0: बिल्कुल हो सकता है। केवल खाद्य प्रसंस्करण ही ऐसी एक विधा है, ऐसी एक संस्था है जो किसान की उपज का मूल्य दुगुना कर सकती है और चार गुना कर सकती है और किसान के उपज को सुरक्षित कर सकती है और साथ ही साथ उसको उसका मूल्य भी दिला सकती है।
1: तो ये जैसे जवाहरबाग की आप बात कर रहे हैं, वहाँ वो उद्यान विभाग के अंदर आता है, आप पहले रहे अभी भी मान लोग होंगे, तो ये क्या वर्ष पर्यंत वहाँ प्रशिक्षण चलते रहते हैं?
0: जी हाँ
1: जी। अच्छा। और 20 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर वो आपको बता देंगे कि आपको कब आना है।
0: जी जी
1: जी।
0: और वहाँ जाकर सीख लीजिए।
1: तो 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद फिर और कितने पैसे की आवश्यकता होगी? जैसे मान लो एक व्यक्ति तो किसान हो सकता है, मान लो एक व्यक्ति नौजवान है, रोजगार नहीं लगा हुआ है, 15 दिन का प्रशिक्षण उसने ले लिया, फिर उसको कितने जगह और कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी कि वो कौन कौन सी मशीन लगाए, कितना जगह उसे एक जगह बनानी है जहां वो मार्केट से जो फसल आ रही है, मान लो इस समय है, अब इस समय जो फल आ रहा है, इस समय जो सब्जी आ रही है, इस समय जो इफरात में आ रहा है, वो जाए मंडी से लेके आए और उसको प्रसंस्कृत करके अपने आसपास बेच सकता है ना? किसान नहीं है तो, किसान है तो अपने यहाँ लगा सकता है। तो कितनी पैसे और उसकी आवश्यकता?
0: मात्र 100 गज जगह की आवश्यकता है और केवल 50,000 रुपए की आवश्यकता है। एक मशीन आएगी और भगोने आएंगे।
1: जी।
0: इसी से शुरू हो जाएगा।
1: जी। तो इसमें भी प्रशिक्षण के बाद क्या सरकार कोई मदद करती है?
0: बिल्कुल।
1: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं।
0: बिल्कुल करती है सरकार, तो आपके साथ है। सरकार कह रही है कि कृषि आधारित कोई भी उद्योग अगर किसान का बेटा या किसान लगाता है तो रॉ मेटेरियल तो उसका वहाँ उपलब्ध है ही है, मिर्च मसाले उसके पास है ही है, गुड़ चीनी उसके पास है ही है, और तकनीकी ज्ञान मैंने दे दिया तो वो अपने 100 गज जगह में जहाँ पर वो अपना पशु बांधता था, जहाँ पर अपनी बिटोरा बुर्जी ये रखता था, उस 100 गज जगह में वो अपना मशीन केवल एक 50,000 रुपए की आएंगी। सरकार 50,000 रुपया दे रही है बिना गारंटी के और बहुत ही आसान किस्तों में दे रही है और उसका ब्याज भी बहुत कम ले रही है और बिना गारंटी के।

0: ऋण उपलब्ध करा रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसान का बेटा अपने यहाँ 50,000 रुपया लोन लेके सरकार की ओर से और अपना संसाधन बना लेता है, तो वो 10 बीघा खेत के बराबर अपना काम कर सकता है और इतना इनकम कर सकता है और रोजी रोटी कमा सकता है।
1: तो जब हम बढ़ती जनसंख्या को पहले व्यक्ति मानते थे, फिर एक जनसंख्या नाम दिया, लेकिन आजकल जो नाम दे रही सरकार वो है मानव संसाधन, मतलब व्यक्ति संसाधन है, है व्यक्ति धन है। अगर वो शिक्षित हो जाए, प्रशिक्षित हो जाए और कुछ हुनरमंद हो जाए तो फिर वो देश के लिए और समाज के लिए संसाधन हो जाता है उसमें। तो एक व्यक्ति अगर थोड़ा सा, हम बड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन 15 दिन की प्रशिक्षण, 50,000 की छोटी सी रकम, वो भी सरकार दे रही है, दो चीज़ तो सरकार ही दे रही है, शिक्षण प्रशिक्षण दे रही है और 50,000 रुपये भी दे रही है। जिला उद्योग केंद्र से और विस्तार करना है तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, है गाँव में जगह आपके पास है, चीज़ें आपके पास मंडी और आसपास हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक नौजवान को रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा दूर भटकने की आवश्यकता नहीं?
0: बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसान का बेटा एक आदमी को रोजगार और देगा, जैसे सरकार कहती है कि 2 लाख रुपए तक का आप कोई भी कृषि आधारित उद्योग लगाते हो, जैसे आप एक आटा चक्की लगाते हो और एक मशीन के लिए एक इंजन लेते हो, तो ये 2 लाख रुपए में बन जाएगा और 2 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का अनुदान सरकार दे रही है। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये राज्य की फल संरक्षण केंद्र के प्रभारी आपको ये जानकारी देंगे।
1: वहां चले जाइए जवाहरबाग,
0: वहां जवाहरबाग चले जाइए। अब आपको 1 लाख रुपया तो लगाना है और 2 लाख रुपए का आपका उद्योग लग गया, उसमें आपको 2 आदमी कम से कम चाहिए, जैसे एक अगर ट्रैक्टर वाला भी चाहिए तो ट्रैक्टर गेहूं लेके आएगा और एक उसको साथ में रहेगा, तो 2 आदमियों को प्रयोग रूप से रोजगार मिल जाएगा। और तुम्हारा जो गेहूं था, जो आजकल किसान अपने गेहूं को चक्की तक नहीं ले जा पाता है, वो घर पे ही अपना आटा पिसाना चाहता है, तो अगर आप अपने घर पे ही सही तरीका से आटा पीसें और वहीं के क्षेत्र के अनुसार वहीं का गेहूं प्रयोग करें और घर घर जाके ही आटे का आप बोरा दें, तो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से हमारे 4 आदमियों को रोजगार मिलेगा और किसान के बेटे की ऑटोमेटिकली स्वरोजगार
1: आय बढ़ जाएगी, फिर जब इस तरह के काम करेंगे, आसपास और 2 भाइयों से मिल जाइए, गांव में एक संगठन बना लीजिए, सामूहिक सहकारिता के आधार पर काम बढ़ी, तो मतलब चीजें इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। बस शुरुआत हो जाए, झिझक खोल लें, थोड़ा सा शिक्षण प्रशिक्षण ले आए, जानकारी जो हमारे पास है उपलब्ध उसका उपयोग कर ले। तो आज के समय में क्या मतलब, बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अब मैं आपके मुंह से ये कहलवाना चाहूँगा कि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं।
0: बिल्कुल आसान हो गई हैं, सरकार का इतना बढ़िया फोकस चल रहा है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए तमाम स्कीमें लग रही हैं और मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत आपको 10 लाख रुपये तक का अनुदान है और 30 लाख रुपए तक का ऋण है।
1: जी।
0: अगर छोटे रूप से आपने कोई भी उद्योग लगाया और वह बढ़ता है तो उन्नयन के लिए आप 30 लाख रुपया सरकार दे रही है, 10 लाख रुपए का इसमें अनुदान दे रही है, यानी 20 लाख रुपए को आप लौटाइए और एक बड़े उद्योगपति के रूप में किसान का बेटा अपना उद्योग,
1: मतलब आज सिर्फ किसान रह जाए ये नहीं है, सरकार उसके साथ है कि वो भी, जैसे कहते हैं कि खेतीबाड़ी अब सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं, वो आजीविका का साधन हो गई है, वो जरिया हो गई है, वो जीविका नहीं, वो उद्योग का दर्जा उसको मिल गया है, तो आप उसको और बढ़ाइए। तो खाद्य प्रसंस्करण जैसी योजनाओं से जुड़ करके छोटे से आप बड़े स्तर तक जा सकते हैं। आपको एक बड़ी सोच की जरूरत है
0: जी,
1: बड़े प्रयास की जरूरत है और विश्वास की जरूरत है
0: जी। मेरा मानना है, हमारे यहाँ दूध का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, विश्व में हम पहले नंबर पे हैं दूध उत्पादन में, लेकिन मजे की बात देखिए और बड़ा आश्चर्य देखिए कि किसान दूध उत्पादन करता है और उस दूध को औने पौने एक दूधिया को दे देता है। अब सरकार कहती है कि आप अपने दूध को गर्म गांव में ही इकट्ठा करिए और आप इससे पनीर बनाइए, दही बनाइए, सूखा दूध बनाइए और ड्रिंक के रूप में, यानी बोतलों में दूध बंद करके और उसको पीने के लिए परोसिए, तो आप 4 गुना लाभ दूध का कमा सकते हो।
1: और साधन के लिए सरकार आपके पास,
0: और सरकार इसमें मैं बता रहा था कि 23वीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अनुसार

0: आप 30 लाख रुपए तक का कोई भी लोन लेके आप ये काम शुरू कर सकते हैं। टेक्निकल नो हाउ जानने के लिए सरकार आपके केंद्र बने हुए हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें बनाने का ज्ञान दे दिया जाएगा और सरकार 30 लाख रुपए आपको दे रही है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी परेशानी के। और आपके पास अगर गांव में जगह है तो आप 30 लाख रुपया से एक बहुत बड़ा उद्योग
1: डेयरी आप जा सकते हैं। हाँ।
0: एक किसान के बेटे से आप एक उद्योगपति का दर्जा पा सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, बात जो बिशन सिंह जी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये विषय विशेषज्ञ रहे, खाद्य प्रसंस्करण विभाग में इन्होंने एक लंबा जीवन जिया। सिर्फ यही नहीं, आप डेयरी डालिए, आप खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट डालिए, आप बीजों के उन्नयन के लिए कुछ डालिए, तो किसान के आसपास खेती आधारित जो पुराने हमारे धंधे थे उनका रूपांतरण करके आज भी आप उद्योगपति बन सकते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज डाल सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उतना किसान को सरकार देने के लिए उपलब्ध है, और उसमें बहुत बड़ा जो भाग है वो अनुदान के रूप में दे रही है, गारंटी की ज़रूरत नहीं है। और ज़िले में आप जाइए, कहीं नहीं है तो आप जवाहर बाग का नाम तो हमने बार बार लिया, वहाँ चले जाइए, संपर्क कर लीजिए, 20 रुपये में प्रशिक्षण मिल रहा है। तो जीवन इतना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है, बस हमें जागरूकता और प्रयास की और विश्वास की ज़रूरत है। बिशन सिंह जी, आप आए हमारे किसान भाइयों से, युवा साथियों से, आज आपने कुछ बातें की, और जो जनसंख्या है हमारी जो काफ़ी है, हम एक साधन संपन्न देश तो हैं ही लेकिन जनसंख्या में भी हम काफ़ी आगे, तो उसके भोजन पानी के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, तो आप उनका लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए, जानकार बनिए और आगे बढ़िए। तो बिशन सिंह जी, आपने जानकारी दी, किसान भैयाओं से जुड़े, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं और किसान भैयाओं से राम राम करते हैं। राम राम।
0: राम राम जी। राम राम।
2: किसान भैयाओं, अभी आप जानकारी ले रहे बढ़ती जनसंख्या और रोजगार सृजन हेतु खाद्य प्रशिक्षण का योगदान, जानकारी दे रहे बिशन सिंह और इनसे भेंट कर रहे ओपी सिंह। भैयाओं, इतनी बड़ी चर्चा में जरूर हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि भैया हम अपने रोजगार सृजन के कार्यें कौन कौन से प्रशिक्षण लेके अपने रोजगार को बढ़ा सकें, चला सकें या तैयार कर सकें। अब देखो भैया, बात करेंगे जो बरसात को मौसम है, तो या मौसम में हमारे जो कृषि के करीबाई काम कौन कौन से, देखो आप ये जानो कि धान में तो भैया या समय पर रोपाई है गई है, तो सबसे पहले तो वहाँ में घास नहीं हुए तो ऐसी कोई दवाई छिड़क दी जाए, हल्की सी बूंद बूंद करके डाली जाए, जाते घास उपज के नहीं आवे और धान हमारे सही बने रहे। फिर अगर आपकी पौध जम गई है, ऐसी 10-12 दिन की है गई है, तो वहाँ में एक खाद लगाए वो जरूरी है, जहाँ में जिंक मिला लें, जाते कि बाकी पौधा अच्छी तरह जम जाए और फूट होने लगे। ऐसे ही भैया अपनो ये कपास है, तो कपास की खेती में अगर नराई आ रही हुए घास फूस है वो तो भाई नराई दें, क्योंकि आजकल बड़ा अच्छा मौसम है, जाते खुरपिया वो बढ़िया चल जाएगी, और मान लो जल भराव है वो हो तो नाली में या दगरी में कहूँ पानी निकल जाए, जाते कि हमारो कपास की फसल गर्भी से बच जाए। अरहर पानी की बड़ी कच्ची है, अरहर में पानी ठाड़ो रहे वो बड़ो नुकसानदायक है, तो वहाँ में वो पानी भैया नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसी कुछ थोड़ी थोड़ी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो भैया हम अपनी खेती बाड़ी को विशेष करके लाभ ले सकें। तो समय की बाध्यता भैया, अब कार्यक्रम को यहीं विराम देवी की हमें आज्ञा दो, सभी किसान भैया बहन को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, किसान वाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे वीरेंद्र सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदा।

अनुराधा पौडवाल के स्वरों में आपने सुना संत ज्ञानेश्वर फिल्म का ये भजन। कार्यक्रम का अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के स्वर में। फिल्म का नाम है संत रविदास।

0: अमित त्रिवेदी की आवाज़ में आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का ये भजन। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रज यात्रा का प्रसंग। कथाकार हैं धर्मवीर अज्ञानी।
1: कृष्णाय वासुदेवाय

ज्योति द्वारा ही तन ये चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक है, चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। सच्चिदानंद तुम वोई हो, वो ही निज देश तुम्हारा है। जो सर्व गुणों से ऊपर है, वो पंच कोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वही जीवात्मा है। वास्तव में वो ही कृष्ण तत्व विश्वात्मा है, परमात्मा है। उद्धव जी ने श्री कृष्ण तत्व की विवेचना या प्रकार ब्रज गोपीन को समझाई है। तब तो गोपी उद्धव सो कन्हैया के बारे में अपनों कुपित भाव करके बोली, द्वार के देहरिया, पौरी के पौरिया, पहरुआ वा घर के घनश्याम हैं। दासन के दास, सखीन के सेवक, पार परोशीन के धनधाम हैं। श्रीधर कान भये वह भामिन, मान भरी नह बोलत बाम हैं। एक कहे सखी वे तो अली, ब्रसभान लली की गली के गुलाम हैं। अरे बहना, अब हमारे कान्हा जी तो राधा जी के गुलाम जो बन गए हैं, बिने अब हमारी याद चुमाएवे लगी। या पे उद्धव जी ने ब्रज गोपीन सो निराकार श्री कृष्ण को स्वरूप बतायो। दृष्टा दर्शन दृश्य वह, वो ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसको ही रूप हैं, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी नहीं जला सकती, उड़ नहीं सके वो हवा से भी, वर्षा भी नहीं गला सकती। जन्म मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसके भीतर ही सब शरीर बनते हैं, मिटते जाते हैं, जिस तरह पुराने होने पे कपड़े भी बदले जाते हैं। जिस श्री कृष्ण की याद में हे गोपियो तुम तड़प रही हो, वो तो आप ही के भीतर विराजमान हैं, फिर आप काये लिए परेशान हो। गोपियाँ कहे हैं मन मोहन सो जब सो बिछुरी, तन आसुन सो नित धोवत हैं। हर चंद जु प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाजें खोवत हैं। दुख को दिन तो कट जावत है, पर रात में ख्वाब सजोवत हैं। हम ही अपने दिल की जाने, सखी सोमत हैं के रोमत हैं। हे उद्धव जी, हमारी जो या समय दशा है, वाकू हमारे अलावा कोई दूसरो ना जान सके है। आत्मा कांत शरीर है, देह भ्रांत ही भ्रांत, याई बात पे एक अब देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के घड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह पे धरे हुए। देखो सूरज आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही तेज महा, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस भी मटके में नजर करो, वो ही सूर्य नजर में आता है। नाना स्वरूप में नाना विध, नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा फूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियाला नहीं रहा। हे गोपियो, जैसे एक सूर्य अनेक जल भरे मटकन में अलग अलग दिखे है, ठीक वही तरिया सब में वो श्री कृष्ण विराजमान हैं। आप उन्हीं को ध्यान करो। गोपियाँ कह में हैं हे उद्धव जी, व्याकुल हों तड़फों बिन मोहन, कोई तो तनक दया दर्शावो। श्याम रूप की प्यासी अखियाँ, नीर रूप कोई आए पिवावो। जिय में कछ होश नहीं बाकी, हाय हरिचंद को उठ जावो। आवे न आवे प्यारो लला, अरे हालत कोई जाए सुनावो। या प्रकार गोपी बड़ी दुखित है कि अपनी भावना उद्धव जी से व्यक्त कर रहे हैं। उद्धव जी कह में हे गोपियो, इसी तरह संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव को यही निश्चित गेह। इसी तरह संसार को चलतो है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है

0: ना कोई सरताज, चाहे तू योग करे भ्रकुटी मध्य ध्यान करे, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निराकार ज्योति निर्भय व्याप रही, ऐसो तत्व ज्ञान खुद के मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करे, मोसों वो भिन्न नाए या विधि संहार ले, जब तक न नंद को कुमार चित तेरे चित चढ़े, तब तक ही ऊधों बैठ ब्रह्म को विचार ले। एक कली को रस गहे फिर तू बढ़त अगार, ऐसो स्वार्थ में रहे तऊ प्रभु अनुदार। हे भमरा अक्रूर से तू क्या कम है क्रूर, घायल दिल वाने कियो तूने चकनाचूर। प्रेम दीवानी हम भई निकसे टेढ़ी बात, मन वाणी संयम नहीं बिसरो अपनो गात। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम। आज आपने आनंद लिया श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत उद्धव जी की ब्रज यात्रा की प्रसंगा। कथाकार थे धर्मवीर अज्ञानी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग

रामकोला विकास खंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को

0: कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: अयोध्या में आज श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से

जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में चार व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में सात व्यक्ति सवार थे जिनमें से चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन

विनोद खड़ से किया। और अगला संदेश हमें मिला है मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना भगत का। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए गांधीनगर गुजरात से ये श्रोता है जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष, दीपन और उर्वशी। चौखुलटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहद परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़े हैं। गंज डुंडवारा से एम फारूक शेख, शेख शमा, परवीन, साइना फारूक, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्भार। हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लाडो, लवली, रजत, लव, कोश और समस्त खन्ना परिवार। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू का हमें संदेश मिला है रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, सरधना मेरठ से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता, आदि जैन, अंश, भव्य जैन। अगला संदेश हमें मिला है आप सभी का, आप हैं अनुरोध करता। हरिशंकर, सोनी, द्रौपदी रानी और परिवार के सभी सदस्य अंबिका आवास कॉलोनी बरेली उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर हमसे जुड़े हैं। गगनदीप, तृप्ता और प्रियंका इनके साथ हैं। प्रशांत, प्रियम और बेबी वामिका हमसे जुड़े हैं पंजाब से। अगला संदेश हमने लिया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और विद्या कुमारी का। नलेश्वर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभारकर, निर्मला और विशाल का हमें ये संदेश मिला है। ये संदेश अमित जंघेल का और इनके साथ हैं शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। सुखरी कला धमदा ग्राम से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंघेल हमसे जुड़े हैं कोहका भिलाई से। अशोक ग्रोवर, प्रवीण, विक्रमजीत, अनमोल और पवनीत ग्रोवर हमसे जुड़े हैं भटिंडा से। सुन लेते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है बरसात और इस गीत को गाया है कुमार सानू और साधना सरगम ने।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में आपने सुना बरसात फिल्म का गीत। और अब ले लेते हैं आप सभी के संदेश। साधरा दिल्ली से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य, मेघा मस्कीन। पंचकूला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना का संदेश हमें मिला है। अगला संदेश हमने लिया है गंज डुंडवारा से शमसुल खान, अदनान, फैजान, अनु खान, कलीम अंसारी और उस्मान अंसारी। ये श्रोता हमसे जुड़े हैं बोराला खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ बाग पाटिल, अमोक गुड़िया और अशोक देशमुख। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए हमसे जुड़े हैं ये श्रोता छत्तीसगढ़ से। इन्होंने ये संदेश लिखा है राष्ट्रपाल गजभे, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभे का। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, विजया तायडे। विदर्भ से अगला मैसेज हमें मिला है वसंतराव भोजने का और इनके साथ है पीएस नवारकर। बिजनौर से अगले श्रोता है मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सीताराम बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू भैया, साजदा और हिना कौशल।

का इनका पुनः हमें संदेश प्राप्त हुआ है, तो कृपया करके पुनः संदेश आप ना भेजें, आपका संदेश हमने पढ़ लिया है। बुराला खुर्द महाराष्ट्र से इनका भी हमें एक बार फिर से संदेश प्राप्त हुआ है। गंज डुंडवारा से अगले श्रोता हैं शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान, फैजान, अनुखान और उस्मान अंसारी, इनके साथ हैं कलीम अंसारी। किसी भी गीत की फरमाइश करते हुए मदरसा गेट भाऊपुर जौनपुर से हमसे जुड़े हैं अगले श्रोता इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशान, अरमान इरशान, नवेद इरशान और अजरा तबस्सुम। बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया परवीन। अगला संदेश हमें मिला है हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत। किसी भी गीत की इन्होंने फरमाइश हमें लिख भेजी है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र और नौखेलाल। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना हमसे जुड़े हैं। किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने लिखी है। नादेर से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन का हमें संदेश मिला है। और अगला संदेश प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। ये संदेश हमने लिया है पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। गौतम नगर नादेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले, नादेड़ महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं ये श्रोता। अगला संदेश हमने लिया है आप सभी का हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कहना, मनोहर ताई और प्रभुलाल बागरी का। झालावाड़ राजस्थान से इन्होंने हमें संदेश लिखा है। सईद भाई, आसिफा परवीन, मोहम्मद सैफ और अल्फिया सराफ हमसे जुड़े हैं अमरावती से। हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा हमसे जुड़े हैं। अगला संदेश हमने लिया है आपका, आप हैं महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव का संदेश हमें मिला है। ये संदेश हम तक आया है अमरावती से शिला देवी शिंदे, सिद्धार्थ और हीरामण शेरे का। आपकी फरमाइश हम सुनते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं चांदनी फिल्म से।